आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में सुबह के 7 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 7 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: में क्यों रोक दी?
1: तुम्हारा साथ ज्यादा ज्यादा बहुत ज्यादा देर रहने के लिए।
0: ओह माय गॉड, मेरी तो हिंदी कविता की क्लास है।
1: हिंदी कविता है ना?
0: हाँ।
1: वो मैं तुमको टीच करता हूँ।
0: तुम और हिंदी कविता?
1: तुम समझता मैं हिंदी कविता नहीं जानता? मेरे जीवन साथी, प्यार किए जा, जवानी दीवानी, खूबसूरत जिद्दी दी पड़ोसन, सत्यम शिवम सुंदरम बिन्हर।

Mm-hmm.

0: जिसने पाप।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 8 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

तुम अपना वादा भूल गए प्रकाश। तुमने कहा था कि हमारे प्यार की अधूरी कहानी अगले जन्म में जरूर पूरी होगी। बोलो प्रकाश, कहा था ना? मगर वो कहानी आज भी अधूरी है। मैं आज भी इस वादी में तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। क्या तुम मेरे पास नहीं आओगे? जवाब दो प्रकाश, क्या तुम अपना वादा पूरा नहीं करोगे? बोलो प्रकाश, नहीं आओगे?

0: बेगाना, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों तड़पाते हो बाबू?
1: मैं तुम्हें क्या तड़पाऊंगा, मैं तो खुद तड़प रहा हूं।
0: तुम यहां से चले क्यों नहीं जाते?
1: चला जाऊं कहां, चला जाऊं कैसे, चला जाऊं? ये तो वादी है जहां पर हम दोनों की मौत हुई थी, ये तो वो धरती है जहां पिछले जन्म के दो प्रेमी दफन है, ये तो वो जगह है जहां पर मरने से पहले हम दोनों ने जन्म जन्म तक साथ निभाने की कसमें खाई थी। तुम ही बताओ इस धरती को छोड़कर कहां चले जाऊं, कैसे चला जाऊं?
0: तुम्हारी बातें मेरी समझ में कुछ भी नहीं आती है। आखिर तुम चाहते क्या हो बाबू?
1: मैं तुम्हें वो कहानी याद दिलाना चाहता हूं जो चंदनगढ़ के राजमहल से शुरू हुई लेकिन पूरी होने से पहले खत्म कर दी गई।
0: ये झूठ है, मेरा उस कहानी से क्या संबंध है?
1: संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। अगर तुम ना होती तो वो कहानी कभी शुरू ना होती। मेरा विश्वास करो, मुझ पर यकीन करो रत्ना, आज भी चंदनगढ़ के राजमहल में तुम्हारी तस्वीर लगी है।
0: तस्वीर?
1: हाँ।
0: मेरी तस्वीर?
1: हाँ।
0: नहीं नहीं बाबू, तुमसे जरूर कोई भूल हुई है, वो तस्वीर किसी और की होगी।
1: रत्ना, चंदनगढ़ यहाँ से ज्यादा दूर तो नहीं, तुम चलकर अपनी आंखों से देख लो और चलकर खुद ही फैसला कर लो। आज देखो देखो, ये चंदनगढ़ का राजमहल है, इसे देख के कुछ याद आया? जानती हो पिछले जन्म में तुम यहाँ की राजनर्तकी थी और मैं यहाँ का राजगायक, इसी शाही बाग में हम मिला करते थे जहां से हमारी मोहब्बत शुरू हुई थी। कुछ याद आया? कुछ भी नहीं?
0: नहीं।
1: आओ आओ मेरे साथ।

0: ये वही राज दरबार है। वही दीवारें हैं, वही सतून है, इन पर की गई नक्काशी। बरसों बीत गए, कुछ भी तो नहीं बदला। इसे गौर से देखो, पहचाने की कोशिश करो। ये वही राज दरबार है, कुछ याद आया? आओ आओ मेरे साथ।
1: ये दीवाने खास है जहां पर नृत्य और संगीत की महफिलें जमा करती थी। याद करो, ये वही जगह है जहां पहली बार तुम्हारा हमारा सामना हुआ था। यहां पर महाराज बैठा करते थे और चारों तरफ दरबारी। उस तरफ गुरुजी का सिंहासन था और उस तरफ उस्ताद बंदे अली खां। और तुम गौरी के साथ मेरे बिल्कुल सामने बैठी थी। और जैसे महाराज का इशारा हुआ, मेरी उंगलियां सितार पर मचल उठी और तुम्हारे पांव बिजली की तरह थिरकने लगे।

ये वही जगह है जहां हम रहा करते थे। उस तरफ मेरा कमरा था और इस तरफ तुम्हारा। ये देखो,

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to रेडियो गाना and it's 9 AM in India. Keep listening to रेडियो गाना. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 10 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 11 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 12 noon in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

जब दरवाजा खुला तो मैं दंग रह गया। दो हसीन आंखें मेरी तरफ देख रही थीं और दिल धड़क धड़क के कह रहा था कि जॉनी बेटे, तेरी मंजिल यहीं पर है, लेकिन याद रख, अगर इन्हें मालूम हो गया कि तू चोर है, उचक्का है, छोटी मोटी चोरियों के इल्जाम में बार बार जेल जा चुका है, तो इन हसीन आंखों में तेरे लिए सिवाय नफरत के कुछ नहीं रहेगा।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to रेडियो गाना and it's 1 PM in India. Keep listening to रेडियो गाना. Thank you.

0: जाते हो या जबरदस्ती करूं?
1: जाता हूं, जाता हूं, जाता हूं। केवल इतना बता दीजिए कि आप हमसे प्यार तो करती हैं ना?
0: नहीं।
1: थोड़ा भी नहीं?
0: नहीं
1: झूठा भी नहीं?
0: नहीं नहीं नहीं, नहीं।

बंधुओं बजाइए ढोल और बजाइए बाजा।

हाँ तो सज्जनों सुनो सहेलियों की कहानी। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, हाँ, अरे अरे

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 2 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी मेरा प्यार है सर्द पानी मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ हाँ।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 3 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: चकाचक हिरलो पान चबा
1: आ
0: आहा।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 4 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: क्या हुआ?
1: हाय, गम का फसाना बन गया अच्छा।
0: अच्छा जी।
1: एक बहाना बन गया अच्छा।
0: अच्छा।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 5 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 5 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: देखो हाँ मायके नहीं तू मत मायके मायके मत जाइयो।
1: ए टोनी फर्नांडिस

0: गगन को डोर समझ रहा है? नादान, मौत आई है तेरी।
1: मौत? इतनी हसीन, अरे ये नागन डसले तो क्या कहना।

आपने ट्यून किया है रेडियो हॉट स्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार ओल्ड इज गोल्ड स्पेशल शो आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार 90s एंड न्यूज स्पेशल में सुनिए 1986 से लेकर आज तक के गाने। आप मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश कर सकते हैं सिर्फ रेडियो हॉट स्टार के ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉट स्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉट स्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।

हाय हेलो नमस्ते गुड इवनिंग सत श्री अकाल राधे राधे अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमन। आ चुका हूं लेकर आज स्टार ओल्ड इज गोल्ड का ये बहुत ही प्यारा शो, और आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू सो मच एक से प्रति गाने की डिमांड करने के लिए। लेकिन सबसे पहले मेरे पसंद का मेरी डिमांड, इंजॉय कीजिए। आते इस गाने के बाद आप सभी का वेलकम।

0: वेलकम बैक। और सभी दोस्तों का वेलकम करते हैं। सबसे पहले जुड़ने वाले हमारे सरफराज सरफू भाई साउथ अफ्रीका से जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत वेलकम करते हैं मेरे दोस्त। और उनके बाद जुड़ने वाले हैं हमारे अशोक देशमुख जी। वाह क्या बात है, आज तो ये हाजिर है बहुत टाइम से सबसे पहले। और सरवजीत सेठी जी भी हैं, क्या कहते हैं इनकी सुनते हैं।
1: अमन सर जी,
0: जी जी बोलिए।
1: नमस्ते,
0: नमस्ते जी।
1: मैं सरवजीत सेठी फाजिलका पंजाब से। कैसे हैं आप?
0: बहुत अच्छा, आप बताइए।
1: हम भी अपने स्थान पर ठीक हैं। हम भी आपके कार्यक्रम में शामिल हो गए हैं, तो सुनते रहिए रेडियो होस्ट चार जो सबको दीवाना बना दे।
0: धन्यवाद। और क्या नाम है इनका? नाहिद अंसारी जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत वेलकम है। वालेकुम अस्सलाम नाहिद अंसारी जी। और मुबारक हुसैन जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत वेलकम है। ये दुमका से हैं शायद, दुमका झारखंड से हैं जी। बहुत बहुत वेलकम है मुबारक हुसैन जी। और बता दूं कि सुनीता गुप्ता, ये क्या नाम है, सुनीता गोप जी जुड़ चुके हैं सरायकेला झारखंड से। बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और बीके पंत जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत वेलकम है बीके पंत जी। साथ ही साथ एमडी फैज आलम जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और राजेश कुमार जी, वेलकम है आपका भी राजेश कुमार जी। साथ ही साथ मंगेश देशमुख जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत वेलकम करते हैं मंगेश देशमुख जी। अमीना खान जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं कि वेलकम जी, वेलकम रेडियो हॉट स्टार ओल्ड इज गोल्ड प्रोग्राम में अमीना खान आपका वेलकम करती है। हाय थैंक यू सो मच। और ठीक है, ओके, अच्छा है, अच्छा लगा आपका ये मुझे वेलकम करना। और बाबूलाल अंजना जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत वेलकम करते हैं बाबूलाल अंजना जी आपका भी। सुनील कुमार जी वेलकम है बांका बिहार से। साथ ही साथ जितेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है आपका भी। और आर्य सिंधे जी जुड़ चुके हैं गांधीनगर गुजरात से, वेलकम है आपका भी। और मीना इब्राहिम जी जुड़ चुके हैं यूएस से, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं?
2: अरजय अमन सर जी शुभ संध्या, नमस्कार। नमस्ते जी, आपका ओपनिंग सॉन्ग लाजवाब अच्छा लगा गाना, थैंक यू।
0: वेलकम जी आपका भी। और साथ ही साथ और मैं बता दूं कि कौन कौन से दोस्त हैं, तो हीरामन खेड़े जी जुड़ चुके हैं, क्या कहते हैं?
3: नमस्कार आरजे अमन सर जी, इस लाइव कार्यक्रम में मैं भी जुड़ गया हूँ। मैं आपका रेडियो दोस्त हीरामन खिराड़े और आपका ओपनिंग सॉन्ग बहुत ही सुपर से ऊपर।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, वेलकम है आपका भी। हीरामन खिराड़े जी, बिट्टू कुमार जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। प्रमोद कुमार जी जुड़ चुके हैं आगरा से, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। अनिल कश्यप जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं छोटपुर सिवान से। और साथ ही साथ गजानन सरोकार जी जुड़ चुके हैं महाराष्ट्र से, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और जाकिर खान जी जुड़ चुके हैं ये जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से, बहुत बहुत वेलकम है। और प्रियंका जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है प्रियंका जी। और साथ ही साथ वाई बी देसले जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं वाई बी देसले जी।

0: बिल्कुल तेरे नाम का दीवाना और तेरे घर को ढूंढता है। और वैसे फीडबैक भी आ चुके हैं बहुत सारे, बहुत से नाजिम जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं नाजिम जी। साथ ही साथ गजानन सरकार जी लिखते हैं कि दोस्त नीलेश विरोकार जी का गाना मुझे बहुत बेहतरीन लगा, थैंक यू सो मच फॉर दिस सॉन्ग। एंड अशोक देशमुख जी लिखते हैं कि नीलेश विरोकार जी के पसंद सुपर हिट लाजवाब लगी है। और क्या नाम है इनका, विलास निगम जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है विलास निगम सर जी। और नंदलाल जी जुड़ चुके हैं गाजीपुर यूपी से, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और हुकुमचंद जी ये जुड़ चुके हैं कोटा राजस्थान से, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। यानी पूरा भारत से जुड़ चुके हैं लोग, सभी का वेलकम करते हैं। आत्माराम जी,
1: प्यारे अमन खान सर जी, गुड इवनिंग जी,
0: गुड इवनिंग जी।
1: आ गए हम अपने रेडियो हॉट स्टार पर जो दीवाना बना दे,
0: बहुत बहुत
1: सभी भाइयों को प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू सर, मैं आत्माराम पाटिल लिहा बुलढाणा महाराष्ट्र से।
0: बहुत बहुत वेलकम है आपका भी आत्माराम जी। मीना जी लिखते हैं बहुत खूबसूरत नगमा है, थैंक यू सो मच। एंड अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि नाइस सॉन्ग चल रहा है। और जितेंद्र सिंह जी लिखते हैं कि ओपनिंग गाना बहुत शानदार लगा है, थैंक यू सो मच। एंड मोहन वाली लिखते हैं वाह क्या लाजवाब पसंद है, थैंक यू सो मच। जाकिर जी लिखते हैं कि तुम्हारी हर बात अच्छी लगती है, लिखते हैं कि तुम्हारी हर बात अच्छी लगती है, तुम्हारी हर याद बहुत ही प्यारी लगती है। और कभी दूर मत जाना मुझसे, क्योंकि तुम्हारी हर एक सांस में हमारी जिंदगी भी प्यारी लगती है। जी बिल्कुल, वो तो होता ही है। वैसे अगला जो मैं नगमा सुनाने वाला हूँ उसकी डिमांड आई है महाराष्ट्र से।

0: और गजानन जी के ग्रुप से क्या कहते हैं, जरा पहले हम संजू भाव की सुन लेते हैं, फिर गजानन जी के ग्रुप के को शामिल करते हैं।
1: रेडियो हॉटस्टार, रेडियो हॉटस्टार सुन रहे सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आरजे अमन सर जी, आपको भी हमारा दिल से प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार, नमस्कार।
1: अमन सर जी,
0: बोलिए
1: कैसन बानी?
0: बहुत बढ़िया रहा पत्नी, कैसन बानी?
1: ओके अमन सर जी, हम भी बहुत ही बढ़िया बानी। अमन सर जी, मैं फूले भक्त संजू भाऊ बोदवड़ महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। आज सोमवार और आज की अपनी थीम है स्टार ओल्ड इज गोल्ड। तो आज के कार्यक्रम में सभी ओल्ड इज गोल्ड गीत चलने वाले हैं सर। तो हमने भी ओल्ड इज गोल्ड एक सदाबहार गीत चुना है सर। फिल्म का नाम है हीरो और यह फिल्म 1983 में रिलीज हुई थी। आप हमें इससे फिल्म का एक सदाबहार गीत सुना दीजिए, जिसे आवाज दिए है अनुराधा फोडवाल जी और मनोहर उधा जी इन्होंने। और गीत के बोल सर इस प्रकार है।

0: अमन सर जी,
1: जी
0: आप ये गीत सुना दीजिए और डेडिकेशन में दूंगा सर। सबसे पहले आपको वेलकम अमन सर जी, बाद में आपकी सुंदरता की मूर्त, क्योंकि सर ये गीत आप गा रहे हैं आपकी सुंदरता की मूर्त के लिए, तो ये गीत मैं उनको भी डेडिकेट करूंगा सर।
1: थैंक यू सो मच,
0: धन्यवाद सर उनके लिए भी। बाद में चुलबुली आवाज की मलिका मेरी छोटी और प्यारे बहन आरजे वंशिका जी, आदरणीय आरजे परमार जी और रेडियो टू स्टार सुन रहा मेरा पूरा परिवार, यह गीत मैं सभी को डेडिकेट करूंगा सर, प्लीज सुना दीजिए। रेडियो टू स्टार जो दीवाना बना दे, आरजे अमन जी और आरजे वंशिका जी के साथ, मैं फुले भक्त संजू भाऊ, धन्यवाद।
1: ओके जी, और इसी गाने में जैसे कि मैंने कहा ये डिमांड है ये गजानन जी के पूरे ग्रुप के साथ, तो एंजॉय द ट्रैक। तू मेरा

बिल्कुल कि प्रेम ग्रंथ के पन्नों पे अपनी तकदीर तो जीरो है। वैसे मैं बता दूं कि जो आज यानी कि टॉप 10 यानी कि लीडर बोर्ड में आएंगे उनमें से लॉटरी द्वारा किसी का भी नाम आ सकता है और उन्हें मैं कॉल करूंगा। बिल्कुल

0: वेलकम बैक। और मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं, बहुत सारे अनलिमिटेड। ओ माय गॉड, मैं क्या करूं यार। वैसे फिलहाल ये फीडबैक शामिल करता हूं मैं।
1: आरजे अमन सर जी, गजानंद सुलकर जी, फूले बाग संजू भाव जी, अब पूरा ग्रुप का भाई इसमें शामिल है। सभी भाई अपने अपने गाने में शामिल थे, सभी को धन्यवाद देते हैं।
0: थैंक यू सो मच सर्वेस भगत जी। और रविंद्र गोरखपुर जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं रविंद्र गोरखपुरी जी। और बता दूं कि अशोक देशमुख जी लिखते हैं कि गजानंद जी के ग्रुप की फरमाइश मुझे बहुत ही सुपर हिट लगी। और अगले मैसेज के पास मैं चलता हूं, तो बीका पंच लिखते हैं कि ग्रुप फरमाइश बहुत ही सुपर हिट लगी है और मैसेजेस की भरमार आई हुई है। नीलेश बिरोकार जी लिखते हैं कि अमन जी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे गाने को प्ले करने के लिए, दोस्तों को भी धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। और शाहिद राजा जी लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम अमन सर जी, मैं भी जुड़ चुका हूँ, बहुत बहुत वेलकम है शाहिद राजा जी। और मोहन वाली जी लिखते हैं कि हमारे गुरु फरमाइश बहुत ही शानदार लगी, थैंक यू सो मच सभी दोस्तों का। गजानंद जी लिखते हैं अम्मा सर जी को प्यार भरा नमस्कार है, हम सभी साथियों का गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं। और कुंता जी लिखते हैं कि अमन जी गुड इवनिंग, मैं भी जुड़ गई हूँ। और संजू भाव जी और गजानंद जी के गुरु फरमाइश बहुत ही खूबसूरत लगी, थैंक यू सो मच। एंड मीना जी लिखती हैं कि वाह क्या गाना है, दिल खुश हो गया इस गाने को सुनकर। और ही रामन जी क्या कहते हैं, सुन लेते हैं।
2: हमारे परम मित्र गजानंद सालोकार जी और फूले भक्त संजय भाऊ के साथ साथ सभी साथी मित्र के मिली जुली फरमाइश सुपर से ऊपर। मैं हीरामन खिराड़े वाशिम महाराष्ट्र से, धन्यवाद।
0: धन्यवाद जी आपका भी। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि आत्माराम पाटिल लिखते हैं कि गजानंद जी भाऊ बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं गुरु फरमाइश में शामिल करने के लिए। और साथ ही साथ बाबूलाल जी लिखते हैं कि फूलेबाग संजू भाव जी और जितने भी दोस्त थे इस ग्रुप में शामिल थे, इस गाने में शामिल थे, सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूंगा। अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि सच बात है यानी कि किसी किसी को ही प्यार नसीब होता है। जी बिल्कुल भाई, क्या कहें, काश मेरे भी हाथ में वो लकीर होता है यार। वैसे मैं बता दूं कि नाजिम जी लिखते हैं कि ऑसम सॉन्ग है, बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच फॉर दिस सॉन्ग, धन्यवाद देते हैं। और एमडी फैज जी क्या कहते हैं, जरा इनकी सुन लेते हैं
3: जी। ये भी गाना खूबसूरत है, तू मेरा जानू है, इसी बात पर दो लाइन है। मुझे तुझे देखने के लिए दिल तरसता है, सिर्फ तेरे इंतजार में दिल तड़पता है, और कैसे समझाऊं अपने दिल को, मेरी जान ये मेरा होकर भी
0: तेरे लिए धड़कता है। सच बात है भाई,
3: बहुत बहुत धन्यवाद एमडी फैज आलम,
0: बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल मेहता जी क्या कहते हैं, जरा इनकी भी सुन लेते हैं। क्या भाई,
4: तू मेरा जानू है,
0: अच्छा
4: तू मेरा दिलबर है, हीरो है, हो
5: बहुत ही लाजवाब गाना सुनाया। ग्रुप के सभी भाइयों और बहनों को धन्यवाद कहूँगा, और हमें इस गजानंद ग्रुप में शामिल किया इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आरजे अमन सर नमस्ते, मैं भी जुड़ गए हैं इस लाइव शो में
0: जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। सर्वजीत सेठी लिखते हैं कि कार्यक्रम का आगाज बहुत ही शानदार हुआ है। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि लाजवाब गाने की फरमाइश सुनने को मिला, मजा आ गया सुनकर। और नाही जी लिखते हैं कि सुपर ऑसम फरमाइश, ग्रुप की फरमाइश बहुत अच्छी लगी। उसके बाद अगला जो डिमांड है वो पिया जी की है, और पिया जी तुमने किसी से कभी प्यार किया है, बोलो ना। इंजॉय द ट्रैक।

0: वेलकम बैक। और मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं और प्रमोद जी लिखते हैं कि तेरी मासूमियत, ये लिखते हैं कि तेरी मासूम सी मुस्कान ने ये कैसा जादू कर दिया, ये तेरी मासूम सी मुस्कान ने ये कैसा जादू कर दिया, हमने तो बस देखा था तुम्हें और तुमने अपना दीवाना बना लिया। हाय सच में जी दीवाना हो ही गया हूँ ना मैं। और अनिल मेहता जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच, तुमने किसी से कभी प्यार किया है, बहुत ही शानदार फरमाइश है। बीके पंच लिखते हैं कि वाओ लाजवाब गाने की डिमांड है। और मोहन भाई लिखते हैं कि आज का कार्यक्रम सुपर हिट हो रहा है, थैंक यू सो मच। और संध्या पटेल जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है संध्या पटेल जी। लिखते हैं कि लाजवाब सॉन्ग, मजा आ गया सुन के इस गाने को। और सरवजीत जी लिखते हैं कि लाजवाब गाना ये भी है, बिल्कुल ये तो लाजवाब गाना था ही। नाजिम जी लिखते हैं कि ऑसम सॉन्ग जी, बिल्कुल। और जितेंद्र जी लिखते हैं कि बहुत बेहतरीन फरमाइश है। और अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि हमने भी तो प्यार किया है। अच्छा किससे किया है भाई, बताइएगा जरूर। वैसे मैं बता दूं, अगला जो गाना को जो डिमांड आई है वो भी बहुत ही प्यारी है। वो इसे लेकर आया मैं सरवजीत सेठी जी, फाजिलका पंजाब से। सुनना चाहते हैं बहुत ही प्यारा नगमा जो मुझे बहुत पसंद आता है, सुनिए क्या कहते हैं।
1: अमन सर जी नमस्ते। मैं सरवजीत सेठी फाजिलका पंजाब से, कैसे हैं आप?
0: बहुत अच्छा, आप बताइए।
1: हम भी अपने स्थान पर ठीक हैं। आज हमें उम्मीद मूवी का गीत सुनना है। गीत के बोल हैं, मुझे इश्क है तुझी से,
0: अच्छा
1: मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है,
0: मेरे प्यार की निशानी,
1: मेरे प्यार की निशानी, मुझे इश्क है तुझी से। पहले तो यह गीत आपको डेडिकेट है, उसके बाद आपकी सुंदरता की मुहूर्त को भी यह गीत डेडिकेट है, वंशिका मैम और परमार सर जी को भी यह गीत डेडिकेट है, और रेडियो हॉटस्टार सुनने वाले सभी श्रोताओं को भी यह गीत डेडिकेट है। तो सुनते रहे रेडियो हॉटस्टार जो सबको दीवाना बना दे।
0: धन्यवाद। चलिए सुनवाते हैं आपके पसंद का ये प्यारा सा नगमा, मुझे इश्क है तुझसे, मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी।

0: मुझे इश्क है तुझसे, मेरी जान जिंदगानी, और तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी। बहुत सारे गाने के लिए फीडबैक भी आ चुके हैं, और साहब गजानन जी लिखते हैं कि तुमने किसी से कभी प्यार किया था, ये वाला गाना मुझे बहुत पसंद आया। और अनिल बेटा क्या कहते हैं,
1: मुझे इश्क है तुझसे, मेरे प्यार की निशानी।
2: बहुत ही लाजवाब गाना सुनाया, धन्यवाद कहूँगा सुपर गाने की चॉइस से, और एक से एक सुपर गाने की चॉइस से, ओल्ड इज गोल्ड, वेरी नाइस प्रोग्राम।
0: ओके जी, अभी आपका भी आने वाला है, टेंशन मत लीजिए। और यहाँ पे अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि सुपर हिट सॉन्ग सुनने को मिला, मजा आ गया इस गाने को सुनकर। और साथ ही साथ सर्वेश भगत क्या कहते हैं,
3: हर जय अमन सर जी, सर्वजीत सेठी जी अपने गाने में शामिल किए हैं, धन्यवाद देते हैं जी।
0: धन्यवाद देते हैं आपको भी। और मैं बता दूं कि बीके पंच जी लिखते हैं कि सर जी मुझे इश्क है तुझे से, ये सर्वजीत जी की फरमाइश मुझे बहुत ही सुपरहिट लगी है। और मैं बता दूं यहाँ पे नाजिम जी लिखते हैं कि सुपरहिट सॉन्ग है, और साथ ही साथ यहाँ पे पिया जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच, मेरा गाना आपने प्ले कर दिया है, और बहुत बहुत वेलकम है पिया जी आपका, और बहुत दिन बाद आई हैं। और यहाँ पे मोहन वाले लिखते हैं कि मुझे इश्क है तुझसे वाला गाना मुझे बहुत पसंद आया, थैंक यू सो मच। एमडी फैज जी लिखते हैं कि वाह क्या गाना है, सुपर हिट पसंद, मजा आ गया सुन के इस गाने को। काजल झक्का जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है जी, बिल्कुल प्यारा तो है। बीटू कुमार लिखते हैं कि मुझे ये गाना बहुत बेहतरीन लगा है, थैंक यू सो मच। और अमीना खान जी लिखते हैं कि बहुत बेहतरीन नगमा है, ऑसम, अगला भी सुनिए, वो तो और भी प्यारा है जो मुझे बहुत पसंद है। और राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि अमन जी मैं भी जुड़ गया हूँ, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और गजानंद जी लिखते हैं कि मुझे इश्क है तुझसे वाला गाना मुझे बहुत पसंद आया। अशोक पाल जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है आपका, लिखते हैं कि बेहतरीन पसंद चल रहा है, मुझे इश्क है तुझसे। अकबर खान जी लिखते हैं कि मुझे इश्क है तुझसे, वाह क्या सुपर नगमा है, सुपर से भी ऊपर, थैंक यू सो मच दिल खुश करने के लिए। और संध्या पटेल जी लिखते हैं वर्ल्ड इज गोल्ड, सुपर। और ये क्या कहते हैं इनके सुनते,
4: मुझे इश्क है तुझी से,
0: अच्छा
4: तेरी

0: से। बहुत लाजवाब गाना, बहुत अच्छा गाना, पसंदकर्ता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
1: ओके जी, धन्यवाद देते हैं आपको भी इतना प्यारा फीडबैक देने के लिए। लेकिन अगला जो पसंद है वो है अनिल, क्या नाम है, अनिल मेहता जी, उन्हीं का शायद मेरे ख्याल से है, जैसे मैं चेक करता हूँ, अनिल मेहता जी का ही है। हाँ अनिल मेहता जी सुनना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं जरा सुन लीजिए।
2: भरी दुनिया में आखिर दिल

0: को उसे समझा रे कहाँ जाए।
1: इतना सारा बहुत ही बेहतरीन गाना सुने।
2: अच्छा अभी सुने कहाँ है, मतलब आप अब सुनना चाहते हैं तो सुनवा रहा हूँ ना, एंजॉय कीजिए भरी दुनिया में आखिर दिल और ये गाना एंजॉय।

बिल्कुल भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाए। मोहब्बत हो गई है जिनको वो दीवाने, मतलब यानी मुझ जैसे दीवाने, वो कहाँ जाए, है कि नहीं। वैसे मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं, ओ माय गॉड, तो बहुत से दोस्तों के फीडबैक आ रहे हैं, मैं क्या ही बताऊँ। और पिया जी लिखते हैं कि बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग सुनने को मिला ये गाना। और यहाँ पे रविंद्र गोरखपुरी जी लिखते हैं कि वाह क्या गाना है, सॉन्ग एवरग्रीन, ओल्ड इज गोल्ड, सच में होता है ओल्ड इज गोल्ड ही होता है। हाँ जी, ओल्ड इज गोल्ड ही होता है। रवि महाराज जी लिखते हैं कि मुझे इश्क है तुझे से लाजवाब सॉन्ग सुनने को मुझे मिला। और यहाँ पे धर्मेंद्र वर्मा जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है धर्मेंद्र वर्मा जी, बहुत दिन बाद आए हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका। और मोहन निवारे जी लिखते हैं कि ये गाना मुझे बहुत पसंद आया, थैंक यू सो मच। और मैं बता दूं, जितेंद्र जी लिखते हैं कि शानदार और लाजवाब गाने के लिए थैंक यू सो मच। अनिल मेहता लिखते हैं बहुत बहुत धन्यवाद अमन सर जी मेरा गाना प्ले करने के लिए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि काजल झक्का जी लिखते हैं कि अच्छा बहुत ही बेहतरीन लगा है, मोहब्बत हो गई जिनको दीवाने कहाँ जाएं, अच्छा जी। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि दुनिया की वही रौनक, दिल की वही तन्हाई, और मर जाए तो जीने की दुआ देती है दुनिया, और प्यार वो नहीं जो दुनिया को दिखाया जाए, बल्कि वो है जो दिल में दिल से निभाया जाए। जी बिल्कुल, वैसे मैं बता दूं कि इन प्यार तो प्यार होता है। सरफराज लिखते हैं कि एवर ग्रीन मेलोडियस लाजवाब फरमाइश के लिए थैंक यू सो मच। ओके जी। और नाहिद जी लिखते हैं कि इस दिल को समझाने की नाकाम कोशिश करते हैं हम, आज भी चुपके से तेरी यादों में मरते हैं, कोई ठिकाना नहीं मिलता है इस दीवाने दिल को, जो रास्ता उतरी तरफ न जाए हम उस पर चलने से डरते हैं। बेहतरीन फरमाइश सुनने को मिला, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए। और मैं बता दूं कि यहाँ पे बाबूलाल जी लिखते हैं कि भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाए, गाना मुझे बहुत पसंद आया। और राम के जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम, लिखते हैं वाह क्या सॉन्ग है, मजा आ गया सुनकर, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। और नंदिनी मां लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है बाबू, शुभ संध्या, बहुत बहुत वेलकम है माँ जी, मैं आपको मिस कर रहा था, मैं बोलने वाला था आप और यानी पापा जी पता ना कहाँ गायब हो गए हैं, नहीं दिख रहे। मीना कुमारी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है मीना कुमारी जी। और लिखते हैं कि गुड इवनिंग अमन सर जी, मैं भी जुड़ गई हूँ और सभी को नमस्ते। जी जी नमस्ते। और जी तो आपका गाना मुझे कहाँ भेजा है आपने, मुझे अभी तक तो मिला नहीं है, शायद आपने नहीं भेजा है, नहीं आया अभी तक, शायद गलती से, देखिए कुछ मिस्टेक हो रहा होगा। और बिट्टू कुमार लिखते हैं कि बहुत लाजवाब गाना है, जी लाजवाब तो था। अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि नजर और नसीब में एक गहरा रिश्ता है, क्योंकि नजर को अक्सर वही पसंद आता है जो नसीब में ना हो। क्या बात है, क्या बात कहिए आप, तो आपने तो एक क्या कहते हैं, एक मैंने उसमें सुना था ये मोहरा फिल्म में, आपने तो लाख रुपए की बात कही, हाय ओके। और एमडी फैजी लिखते हैं कि जी बिल्कुल बहुत खूबसूरत ओल्ड इज गोल्ड गाना सुनने को मुझे मिला है, मजा आ गया सुन के। अमीना खान जी लिखते हैं वाह क्या खूबसूरत। और यहाँ पे लिखते हैं कि काश मोहब्बत की कोई दुकान होती, लिखती है कि काश मोहब्बत की कोई दुकान होती, हमें भी उसकी पहचान होती, और खरीद लेते हम तमाम मोहब्बत को, हाय लिखते हैं कि खरीद लेते हैं हम तमाम मोहब्बत को, और चाहे उसकी वो कीमत हमारी जान होती, नहीं नहीं आपकी जान बहुत बहुत ही कीमती है जी, उससे तो कीमती कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है। और क्या खूबसूरत वर्ड्स है इस गाने के, दिल को मतलब क्या कहते हैं, इस मैंने समझाने वाला और सुकून देने वाला ये गाना है, मजा आ गया सुन के। और राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि बहुत ही शानदार पसंद है इस गाने के लिए, थैंक यू सो मच। और अशोक पाल जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार गाना सुनने को मिला है, मजा आ गया सुन के। कुंता जी लिखते हैं कि अमन जी बहुत खूबसूरत प्रोग्राम चल रहा है और सभी गाने बहुत सुपर सुपर हिट चल रहे हैं, जी बिल्कुल। नाजिम जी लिखते हैं कि ऑसम सॉन्ग है, और ओ माय गॉड मैं थक गया फीडबैक पढ़ते। और यहाँ पे फीडबैक संजू भाव लिखते हैं कि भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाए, मोहब्बत हो गई जिनको, अनिल मेहता जी की फरमाइश है भाई। अकबर खान जी लिखते हैं कि भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाए, सिर्फ एक जगह है रेडियो हॉट स्टार, सुने और खुद खो जाए, वाह वाह क्या बात है, आपने तो बहुत अच्छा कह दिया भाई। वैसे अगला गाना जो मैं प्ले करने वाला हूँ, मतलब क्या ही बताऊँ, सभी गाने आज एक से बढ़कर एक है, तो अगला जो गाना मैं प्ले कर दूँ, ओके, तो अगला गाना हमारे यानी कि प्रमोद कुमार जी के, और प्रमोद जी सभी को डेडिकेट करते हैं, सुनवा दिया प्रमोद जी, एंजॉय कीजिए, एंजॉय द ट्रेन।

0: बहुत ही प्यारा ये नगमा था और वैसे फीडबैक भी बहुत सारे आए हुए हैं। ओ माय गॉड, राहुल पासी जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
1: गुड मॉर्निंग अमन सर जी,
0: गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।
1: आपका प्रोग्राम बहुत बढ़िया चल रहा है।
0: थैंक यू। ओके जी, बहुत बहुत वेलकम है भाई राहुल पासी जी। साथ ही साथ यहाँ पे गाजन अंजलि देंगे आदरणीय दोस्त प्रमोद जी की पसंद। मुझे बहुत बेहतरीन लगा, लाजवाब लगा, मजा आ गया भाई सुन के इस गाने को। और नाजिम जी लिखते हैं कि लाजवाब है, के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे दोस्त को। और जितेंद्र जी लिखते हैं कि वर्ल्ड इज गोल्ड, जबरदस्त डिमांड। ओके जी, एम एस परमार जी क्या कहते हैं सुन लेते हैं।
2: आज अमन जी और आवाज के शहंशाह जी, और क्या कहूँ मैं आपको, इससे ऊपर तो कुछ कह ही नहीं सकता। मैं काफी दिनों के बाद आपके प्रोग्राम से जुड़ा हूँ आज, और चाहता हूँ आप मेरी भी पसंद का एक गाना सुनवा दें, और सुना देंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। और वैसे भी दोस्तों को भी यही कहना चाहूंगा कि अमन जी का जो प्रोग्राम है सुपर हिट, सुपर हिट होता है और बहुत ही खूबसूरत होता है। और सभी श्रोताओं के फीडबैक भी मैं सुन रहा हूँ, सभी के फीडबैक बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं। तो आरजे अमन जी प्लीज हो उसके तो मेरा गाना जल्दी जल्दी सुना दीजिए। और
0: जी मैं कोशिश करूंगा आपके लिए गाने को मतलब प्ले करने के लिए। मीना कुमार जी लिखते हैं कि गाना पहुंचा कि नहीं पहुंचा अब तो देखना पड़ेगा मुझे। मीना जी का गाना मुझे अभी तक तो दिख नहीं रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है मुझे, शायद आपने अभी तक नहीं भेजा है इसलिए अभी नहीं आया है। और नाहिद जी लिखते हैं कि मोहब्बत हमने की है और कोई गुनाह तो नहीं, इस दिल में सिर्फ तुम हो और कोई गवाह तो नहीं, लाख छुपाए हम इस दुनिया से अपने जज्बात पर, वो मेरी आंखों में तुम्हारे सिवा कोई चाह तो नहीं। लाजवाब फरमाइश भाई प्रमोद जी को, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए। और बीके पंजी लिखते हैं कि सर जी बहुत ही सुपरहिट फरमाइश थी, ये मजा आ गया सुनकर। और मोहन भाई लिखते हैं कि आज की जो शायरियां हो रही है ना बहुत ही शानदार हो रही है। अच्छा सच में कहा फुले भाग संजू भाई क्या कहते हैं सुन लेते हैं।
3: गुड इवनिंग आरजे अमन सर जी, अमन सर जी मैं फुले भक्त संजू भाऊ, सबसे पहले आपको दिल से लाखों लाखों धन्यवाद। आपने हमारे ग्रुप फरमाइश को चलाया और हमारे ग्रुप फरमाइश को अपने कार्यक्रम में जगह दी। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारा गीत चलाया। और हमारे गीत के पहले आपने हमारे मित्र नीलेश फिरोकार जी, और हमारे गीत के बाद में आपने हमारे मित्र सर्वजीत शेट्टी जी, अनिल मेहता जी, इन तीनों दोस्तों के आपने जो बैक टू बैक फरमाइश चलाई सर, मज़ा आ गया। आज का कार्यक्रम स्टार ओल्ड इज गोल्ड एकदम सुपर गीत से आपने आगाज किया है, तो जाहिर बात है सर आज का कार्यक्रम भी लल्लन टॉप होगा, क्योंकि आप हर कार्यक्रम को बखूबी सजाते हो। मज़ा आ रहा है सर, हम भी जुड़ चुके हैं आपसे, जो है रेडियो टू स्टार दीवाना मना रहा है सभी को आरजे अमन जी के साथ। थैंक यू।
0: ओके जी, वेलकम है आपका भी। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि यहाँ पे प्रमोद कुमार लिखते हैं थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए। दोस्तों का भी धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। धर्मेंद्र वर्मा लिखते हैं कि मोहब्बत की है हमने, बहुत ही खूबसूरत ये फरमाइश थी, मजा आ गया सुन के। और कुंता जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच प्रमोद जी, इतना बेहतरीन आपने ये नगमा सुनवाया, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मीना जी लिखते हैं वाह बहुत ही शानदार गाना है, मैं पहली बार सुन रही हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। और राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि लाजवाब डिमांड के लिए थैंक यू सो मच। और अमीना खान जी लिखते हैं कि आज के प्रोग्राम का नाम अभी दे देती हूँ, अच्छा उजाले उनकी यादों के, वाह बहुत अच्छा नाम है। वैसे अगला गाना सुनिए बहुत अच्छा लगेगा, और रविंदर गोरखपुरी जी लेके आए हुए हैं, और वो गाना मुझे बहुत पसंद है कि पर्दा हटा दो जरा।

0: मुझे पहले बताते बारात लेके आते हम प्यार करने वाले हैं कोई गैर नहीं अरे हम तुम पे मरने वाले हैं कोई
1: बिल्कुल हम तुम पे मरने वाले हैं बहुत मरने वाले हैं जी तुम समझ नहीं सकते हो। और सर्वजीत जी लिखते हैं धन्यवाद अमर जी मेरा गीत प्ले करने के लिए और साथ ही साथ मैं बता दूं कि बीके पंच जी लिखते हैं सर जी सुपर हिट पर भाई सुनने को मिला मजा आ गया ये पर्दा हटा दो और मोहन भाई लिखते हैं कि ये पर्दा हटा दो वाला गाना मुझे बहुत पसंद आया है। साथ ही साथ नाहिद जी लिखते हैं कि हम प्यार करने वाले कोई कोई दिलगी नहीं और तुम्हारे बिना अब हमारी कोई जिंदगी नहीं जुड़ गए हैं तुमसे इस कदर रूह के धागे कि अब तुम्हारे सिवा किसी और की बंदगी नहीं। वाह क्या बात है बहुत ही ब्यूटीफुल चॉइस लगा है। और रविंद्र गोरखपुरी लिखते हैं थैंक यू सो मच अमन जी मेरा गाना प्ले करने के लिए। नाजिम जी लिखते हैं कि ब्लॉक बाइस्टर सुपर हिट पसंद के लिए थैंक यू सो मच। और गजानंद जी लिखते हैं कि रविंद्र गोरखपुरी जी की पसंद मुझे बहुत पसंद है। साथ ही साथ आत्माराम जी लिखते हैं कि अच्छा ये क्या कहते सुनते हैं
2: प्यारे अमन कांत सर जी सभी श्रोताओं की पसंद एक से बढ़कर एक सुनने को मिल रही है। सभी को प्यार भरा नमस्कार और सबको कहूँगा हर दिन सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार आरजे अमन जी के साथ जो दीवाना बना दे आत्माराम पाटिल।
1: धन्यवाद आत्माराम पाटिल जी। एमडी फाइव जी एकदम जबरदस्त पसंद के लिए थैंक यू सो मच और ये डिमांड बहुत ही प्यारा था। और हिदामा जी लिखते हैं कि अरे ओके ठीक है कोई बात नहीं है आप मुझे याद नहीं भी दिलाएंगे तो आपका लिखा हुआ है ना। अशोक पाल जी लिखते हैं कि लाजवाब पसंद है। वैसे अगला जो डिमांड है वो हमारे जितेंद्र सिंह जी का है। जितेंद्र जी सुनवा रहा हूँ जब ये पर्दा हटेगा तो क्या खूबसूरत लगेगी ना है कि नहीं क्या खूब लगती हो बड़ी सुंदर दिखती हो।

0: वेलकम बैक। सच में क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, जितनी तारीफ करें उतना कम है। वैसे अपनी नाजिम जी लिखते हैं कि लाजवाब गाना भी है। जी लाजवाब गाना तो ये है ही था। अमीना खान जी लिखते हैं कि एक नंबर गाना। जी बिल्कुल एक नंबर, अगला भी गाना बहुत अच्छा लगेगा, सुनिएगा। अशोक पाल जी लिखते हैं कि वाह लवली डिमांड, मजा आ गया सुन के इस डिमांड को। और मोहन भाई लिखते हैं कि वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या पसंद है, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। और कुंता जी लिखते हैं कि औसम औसम औसम सॉन्ग की डिमांड है, थैंक यू सो मच जितेंद्र जी। राधाकृष्ण को लिखते हैं बहुत खूबसूरत पसंद है, सुनकर मजा आ गया। और ये क्या कहते हैं, सुन लेते हैं।
1: हेलो अमन सर, गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड्स, रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे अमन सर के साथ। और सर आपने मेरी फरमाश पूरी की, उसको आपको लाखों लाखों धन्यवाद सर।
0: धन्यवाद आपका भी। और यहाँ पे अनिल मेहता लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब गाना सुनने को मिला, मजा आ गया सुन के, धन्यवाद देते हैं। और बीके पंची लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन फरमाइश है, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, बिल्कुल बहुत सुंदर है ना। और नाही जी लिखते हैं कि वाह ये काफी खूबसूरत डिमांड है, मजा आ गया इस गाने को सुनकर। और रविंद्र गोरखपुरी लिखते हैं कि मस्त मस्त मस्त, आज तो सभी गाने बहुत अच्छे लग रहे हैं। और साथ ही साथ मीना कुमारी जी लिखते हैं कि अभी आया, देखिए हाँ आपने भेजा तो है लेकिन जहाँ पे गाने का नाम लिखना है, मतलब मेरे कहने मतलब जहाँ पे आपका अपना नाम लिखना है वहाँ पे अपने गाने का नाम लिख दिया है। कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूँगा, मैं समझ गया कि ये आप ही का ये डिमांड है, मैं कोशिश करूँगा इसको प्ले करने के लिए। लेकिन अगला जो डिमांड है वो मैं प्ले करने वाला हूँ, बहुत ही प्यारा। और ये वो मेरी जान जिसे लेकर है बीके पंत जी। बीके पंत जी, इंजॉय द ट्रैक।

0: की जुबान।
1: ओ मेरी जान, बोल मेरी जान, हाय क्या गाना है, मजा है ना गाना सुन के। वैसे गोविंदा जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं कि एक गोविंदा खंडाटे जी लिखते हैं कि एक नंबर गाना सुनने को मिला। जी बिल्कुल एक नंबर तो है ये गाना। तो प्रमोद लिखते हैं कि बीके पंजी के पसंद मुझे बहुत पसंद है, थैंक यू सो मच बीके पंजी। एंड बाबूलाल जी लिखते हैं कि हमारे सभी दोस्तों के पसंद के एक से बढ़कर एक चल रहे हैं, मजा आ रहा है। बीके पंजी लिखते हैं, अमन जी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे गाने को प्ले करने के लिए, और दोस्तों का भी धन्यवाद देते हैं फीडबैक देने वाले दोस्तों को। और मोहन भाई लिखते हैं कि सुपर हिट पसंद है, ओ मेरी जान बोल मेरी जान। राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन पसंद है, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। और मंगेश देशमुख जी लिखते हैं कि बहुत ही ओल्ड इज गोल्ड, शानदार प्रोग्राम चल रहा है, मजा आ गया सुन के। हमारी नंदनी माँ लिखते हैं कि सुपर सुपर सुपर बेहतरीन पसंद है। और गजानंद जी लिखते हैं कि ओ मेरी जान बोल मेरी जान, लाजवाब गाना सुनने को मिला, मजा आ गया सुनकर। मीना जी लिखते हैं बहुत ही शानदार पसंद है। और नाही जी लिखते हैं कि इश्क है तुझे से इस कदर की अब कोई हद नहीं है, और तुम पास रहो तो जिंदगी की कोई हसरत नहीं है, हम प्यार करने वाले हैं, कोई सौदा नहीं करते हैं, क्योंकि तुम्हारे सिवा इस दिल को किसी और की आदत नहीं है। क्या बात है, कहां से लाती हैं जी नाही जी। वैसे अगला जो मैं डिमांड प्ले करने वाला हूँ, नाम है उनका प्रियंका जी, तो यानी मतलब प्रियंका जी आपका मैं डिमांड को प्ले कर रहा हूँ। प्रियंका जी कहाँ है जी, हाँ मिल गई।

लग रहा है कि पूरा गाना आपने गा दिया। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए गाना आपका मैं प्ले कर रहा हूँ। ये डिमांड मुझे बहुत ही पसंद है। एंजॉय द ट्रैक। ऐ मेरे हम सफर, एक जरा इंतजार।

बिल्कुल ए मेरे हम सफर, एक जरा इंतजार और सुन सलाए दे रही है मंजिल प्यार की। वैसे कुंदा जी लिखते हैं बीके पंजी का गाना मुझे बहुत पसंद आया, लाजवाब। और रविंद्र गोरखपुरी जी लिखते हैं सुपर सॉन्ग, मजा आ रहा है सभी गाने सुन सुन के। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि आपको गजानंद जी लिखते हैं कि इनकी पसंद मुझे बहुत पसंद है, ए मेरे हम सफर। प्रियंका जी थैंक यू सो मच। एंड यहाँ पे नंदनी मां लिखते हैं कि प्रियंका जी का गाना मुझे बहुत पसंद आया, बहुत ही प्यारी आवाज है आपकी। और मोहन वाले लिखते हैं कि एकदम सुपर पसंद के लिए थैंक यू सो मच। और अमीना खान जी लिखते हैं वाह क्या मस्त, ओह क्या अपने सिंगिंग, यानी प्रियंका जी बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत अच्छा गाया बिल्कुल। और यहाँ पे मीना जी लिखते हैं वाह क्या बात है, बहुत लाजवाब, बहुत ही प्यारा। अशोक पाल लिखते हैं कि सुपर हिट फरमाइश, मजा आ गया सुन के। नाजिम जी लिखते हैं ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हिट के लिए धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। और अनिल मेहता लिखते हैं कि रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे। आर जमन जी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, सभी गाना एक से बढ़कर एक चल रहा है। और राधा कृष्ण को लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा नगमा है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और नाही जी लिखते हैं कि वाह जमाने भर की खुशियां एक तरफ और तुम्हारा साथ एक तरफ और प्यार जिस मुकाम पर ला खड़ा किया है हमें वहां मेरी हर सुबह और तुम्हारी ही तुम्हारी हर शाम एक तरफ ओके। और यहाँ पे यहाँ संध्या पटेल लिखते हैं कि ब्यूटीफुल चॉइस है जी बिल्कुल। और आत्माराम लिखते हैं कि ए मेरे हम सफर वाला गाना मुझे बहुत पसंद है, थैंक यू प्रियंका जी। अशोक पाल जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार पसंद है, धन्यवाद देते हैं। इसी बात पे अगला जो नगमा है वो यानी कि नाम है उनका परवेज आलम जी। तो परवेज आलम जी चलो चले कहीं दूर चले, प्यार के लिए जगह ठीक नहीं, इंजॉय द ट्रिप।

0: सर, टाइम क्या हुआ?
1: वेलकम बैक। और लगता है कि मुझे कहीं और ले जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, फिलहाल ले चलते हैं, लेकिन फिलहाल फीडबैक शामिल कर लेते हैं। और बीके पंजी देते हैं सर जी, बहुत ही सुपर इन्फॉर्माइज। चलो चलो कहीं दूर चले, मजा आ गया सुन के। परवेज आलम जी को थैंक यू सो मच। मोहन जी लिखते हैं कि चलो चलो दूर कहीं वाला गाना मुझे बहुत पसंद आया है, थैंक यू सो मच। गजानंद जी लिखते हैं कि ये भी पसंद, मुझे बहुत ही पसंद आया, थैंक यू सो मच। एंड मीना जी, वाओ क्या बात है, बेमिसाल सॉन्ग है, मजा आ गया। राधा कृष्ण को लिखते हैं कि सुपर हिट फरमाइश, दिल खुश हो गया है। और कुंता जी लिखते हैं कि प्रियंका जी की पसंद मुझे बहुत पसंद है, उनकी सिंगिंग मुझे बहुत अच्छी लगी है, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे प्रमोद कुमार लिखते हैं कि लाजवाब फरमाइश है। साथ ही साथ संध्या पटेल जी लिखते हैं कि मजा आ गया इस गाना को सुन के। अगला गाना सुनिए, ये देखिए काजल झक्का जी का, जिसे सुनाना चाहती है सीतामढ़ी बिहार से, और सभी दोस्तों को डेडिकेट करना चाहते हैं। खासतौर से डेडिकेट है मिट्ठू मियाँ जी के। मिट्ठू मियाँ जी, ले जाकर घुमा दीजिए इनको।

वेलकम बैक। और मेरे पास बिट्टू कुमार लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है। जी बिल्कुल, ये तो प्यारा गाना, आइकॉनिक सॉन्ग है ना। मोहन वाली लिखते हैं कि बहुत ही शानदार, कौन दिशा में लेके चला रहे बिट्टू, ही मजा आ गया सुन के इस गाने को। धर्मेंद्र वर्मा लिखते हैं कि काजल जी के पसंद मुझे बहुत ही सुपरहिट लगा है, थैंक यू सो मच काजल जी। एंड वी के पंजी लिखते हैं कि वाह बहुत ही बेहतरीन पसंद के लिए काजल जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। बाबूलाल जी लिखते हैं कि ये काजल जी के पसंद मुझे बहुत ही प्यारी लगी है, थैंक यू सो मच काजल जी। एंड यहाँ पे प्रमोद जी लिखते हैं कि काजल जी के पसंद एकदम झक्कास लगी है, कौन दिशा में लेके चला दे बटुहिया। एंड गजानंद जी लिखते हैं कि ये कौन दिशा में वाला गाना मुझे बहुत पसंद है, थैंक यू सो मच काजल जी। अमीना खान जी लिखते हैं कि आहट सी कोई आए तो लगता हो कि तुम हो, आहट सी कोई आए तो लगता है कि तुम हो, और साया सा कोई लहराए तो लगता है कि तुम हो, अब तुम ही बताओ कि तुम किसी भूत से कम हो। बिल्कुल मैं तो भूत ही हूँ। राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि बहुत ही एक नंबर गाना सुनने को मिला, मजा आ गया, दिल खुश हो गया, थैंक यू सो मच। एंड नाजिम जी लिखते हैं कि आइकॉनिक सॉन्ग की डिमांड, जी बिल्कुल। और कुंता जी लिखते हैं कि ये नदिया के प्यार का बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है, थैंक यू सो मच काजल जी इस ये प्यारे गाने के लिए। और संध्या पटेल जी लिखते हैं कि मेरा फेवरेट सॉन्ग है, अच्छा लगा सुन के, दिल खुश हो गया, थैंक यू सो मच। और ये क्या है, क्या नाम है, अच्छा वहाँ डिलीट हो गया, नो प्रॉब्लम। चलिए अगला जो डिमांड है वो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ, जिंदगी एक सफर है सुहाना, या ये इस गाने को सुनना चाहते हैं सुभाष तिवारी जी, इंजॉय द ट्रेन।

0: वेलकम वेलकम, मेरे पास फीडबैक आए हुए हैं बहुत सारे। गजानन जी लिखते हैं सुभाष तिवारी जी के पसंद, मुझे बहुत पसंद है, थैंक यू सो मच सुभाष तिवारी जी। अच्छा कुछ लिखते हैं कि मैंने तो आपका अच्छा गाया था वो अच्छा। जी जी जी बिल्कुल, और ये मजा आ गया सुन के। और यहाँ पे बी के पंची लिखते हैं वाह बेहतरीन फरमाइश है, थैंक यू सो मच। और मोहन वाले लिखते हैं कि जिंदगी एक सफर सुहाना, क्या गाना है, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और मैं बता दूं कि यहाँ पे जितेंद्र जी लिखते हैं बहुत ही खूबसूरत फरमाइश है, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए। नाहिद जी लिखते हैं कि जिंदगी एक सफर सुहाना, यहाँ कल क्या होगा किसने जाना, बहुत ही बेहतरीन लगा ये गाना। और राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि बहुत ही सुपर हिट पसंद है, थैंक यू सो मच। और मीना जी लिखते हैं वाओ वाओ वाओ क्या बात है, बहुत मजा आ रहा है इस गाने को सुन सुन के। और संध्या पटेल जी लिखते हैं कि जिंदगी एक सफर है सुहाना, बहुत ही प्यारा लगा ये गाना। और सर्वेश भगत क्या कहते हैं,
1: अर्जय अमन सर जी, काजल झा जी और सुभाष तिवारी जी अपने गाने में दोनों भाई और बहन अब शामिल किए, दोनों को धन्यवाद देते हैं। और सभी भाई अपने अपने गाने में शामिल किए, सभी को भी धन्यवाद देते हैं।
0: सर्वेश भगत जी, प्रमोद कुमार लिखते हैं कि कौन कहता है कि मुसाफिर थक कर चूर हो जाते हैं, अगर हौसला बुलंद हो तो रास्ते भी मजबूर हो जाते हैं। जी बस आप चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए। और अब बाबूलाल जी लिखते हैं कि सुभाष जी की पसंद मुझे बहुत ही प्यारी लगी है, धन्यवाद देते हैं उनको। कुंता जी लिखते हैं वाह क्या फरमाइश है, दिल खुश हो गया एकदम। और ये क्या कहते हैं सुभाष जी,
2: अमन सर जी, कुछ देर पहले मेरी प्यारी और छोटी बहन काजल झक्का जी, इनकी फरमाइश आपने चलाई सर, तो उनका गीत हमें बहुत अच्छा लगा, दिल को छू गया। मैं उनको दिल की अनंत गहराई से धन्यवाद बोलना चाहूँगा इतना अच्छा गीत सुनवाने के लिए। और अभी फरमाइश चल रही है हमारे मित्र सुभाष तिवारी जी इनकी, इनका गीत भी सर जिंदगी एक सफर है सुहाना, मज़ा आ रहा है। और आज का कार्यक्रम सच में एकदम बढ़िया और रेडबुल हो रहा है सर, मज़ा आ रहा है। मैं भोले भक्त संजू भाऊ धन्यवाद, हम सफर में आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं सर और सफर का मजा ले रहे हैं, थैंक यू।
0: तो कहाँ जा रहे हैं जरा बताइएगा जरूर। वैसे जिंदगी एक सफर है सुना, लेकिन अगला जो मैं गाना प्ले करने वाला हूँ वो असलम राणा जी का है। असलम राणा जी जब भी आते हैं हमेशा कुछ अलग और यूनिक गाना लेके आते हैं, और आज पता ही क्या लेके आए हैं, अब तो सुनने के बाद ही मालूम चलेगा। असलम राणा जी, असलम हाँ जी क्या कहते हैं, ये लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम अमन भाई जान, मैं MD असलम राणा हापुर उत्तर प्रदेश वाला जी, आज रेडियो हॉटस्टार पर मैं एक गाना सुनना चाहता हूँ, ओल्ड इज गोल्ड में मूवी का नाम है लॉकेट, जो 1986 में आई थी, और इसी गाने और इसी का जो गाना है वो सभी दोस्तों को डेडिकेट करना चाहता हूँ और सुनवा रहा हूँ, सुनवा दिया, इंजॉय कीजिए असलम राणा।

0: और गाना मैंने पहली बार सुना है जी। ओके जी, और वैसे फीडबैक भी आ गया है जी। और अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि एक से बढ़कर एक गाने चल रहे हैं जी, वो तो है। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि रेस्पेक्टेशन असलम नाना जी की पसंद, लाजवाब लगी है, धन्यवाद देते हैं उनको भी। और अमीना खान जी लिखते हैं कि इश्क का ये लिखते हैं कि इश्क का समुंदर अजीब समुंदर है, बिल्कुल लिखते हैं कि इश्क का समुंदर अजीब समुंदर है, जो डूब गया वो आशिक, जो बच गया वो दीवाना, और जो यानी कि तैरते रह गया वो ओहो, क्या बात है अच्छा है आपका। और अशोक देशमुख जी लिखते हैं कि असलम नाना जी की पसंद मुझे बहुत अच्छी लगी, धन्यवाद देते हैं उनको इस गाने के लिए। और सर्वेश भगत जी,
1: अर्जय अमन सर जी, एमडी असलम राणा जी अपने गाने में शामिल किए हैं, धन्यवाद देते हैं जी।
0: जी धन्यवाद है आपका भी। और साथ ही साथ मोहन वाले लिखते हैं कि वाह क्या गाना है सुनने को मिला, मुझे मजा आ गया सुन के। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि असलम राणा जी की पसंद मुझे बहुत सुपर डुपर हिट लगी है। और फूले भक्त संजू भाव जी,
2: अमन सर जी, हमारे परम मित्र एमडी असलम राणा जी, इनकी फरमाइश का गीत अभी चल रहा है सर, तो उनको मैं दिल से धन्यवाद बोलना चाहूंगा, इतना अच्छा गीत उन्होंने सुनवाया और हमें अपने गीत में याद भी किया। आज उनका गीत बहुत दिनों की बात हॉट स्टार पर चल रहा है सर। और आपने जो पूछा हम कहाँ जा रहे हैं सर, तो हम काम के सिलसिले सर मुंबई जा रहे हैं। अच्छा। और गाड़ी में ब्लूटूथ लगाया है सर, और ब्लूटूथ के माध्यम से हम सभी श्रोता आपका कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं सर, मज़ा आ रहा है। मैं भोले भक्त संजू बाबू, रेडियो ऑटो स्टार, जो दीवाना बना दे अमन जी के साथ।
0: धन्यवाद आपको भी। और यहाँ पे कुंता जी देंगे बहुत ही लाजवाब फरमाइश, झक्कास फरमाइश असलम राणा जी की। एमडी यानी के परवेज आलम जी लिखते हैं कि परवेज अहमद, अच्छा ओके तो मेरा नाम परवेज अहमद ना कि परवेज अहमद जी, तो आप यहाँ पे लिखा है एमडी परवेज आलम लिखा हुआ है, आपके नाम क्या गया, तो मैं इसको एडिट कर दूं, आप मुझे बताइएगा यानी परवेज आलम करना है या परवेज अहमद करना है, आप मुझे लिख कर भेज दीजिए, मैं वही नाम आपका लिया करूंगा। ओके। और अलकाजानंद जी लिखते हैं कि असलम राणा जी के पसंद का गाना मुझे बहुत ही पसंद है, थैंक यू सो मच। राधा कृष्ण को लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर फरमाइश है, धन्यवाद देते हैं। और सर्वजीत जी लिखते हैं कि सभी गाने सुपरहिट चल रहे हैं, मजा आ गया सुन के। और ये क्या कहते हैं,
3: हेलो नमस्ते सर जी,
0: नमस्ते,
3: और मैं अनिल कश्यप आपको मैसेज कर रहा हूँ। मैं ट्रैफिक में था और लगातार गाने तो सुन ही रहा था, तो कितना अच्छा लगा, पहले आया वो मेरी जान, फिर ऐ मेरे हम सफ़र, और उसके बाद से जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, तो मुझे भी लगा कि अब है बताना कि प्रोग्राम चल रहा है सुहाना और इसमें क्या छुपाना,
0: क्या बात है,
3: बहुत बढ़िया सर,
0: धन्यवाद आपका इतना प्यारा फीडबैक के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अनिल कश्यप पे जी। वैसे ओके मैं आपको बता दूं कि अगला जो गाना है वो मैं लेने वाला हूं, हमारे ये तीन दोस्त हैं, जैसे कि हमारे सर्वेश भगत जी हैं, अशोक देशमुख जी हैं, आत्माराम पाटिल जी हैं, इन सभी की फरमाइश एक ही है, तो पहले अशोक देशमुख जी का हम सुन लेते हैं, क्या कहते हैं अशोक देशमुख जी।
4: नमस्कार अमन सर।
0: नमस्कार,
4: मैं निम्बरा महाराष्ट्र से अशोक देशमुख।
0: वेलकम।
4: आज का थीम है स्टार ओल्ड इज गोल्ड, तो मुझे फिल्म इन इवनिंग इन पेरिस का गीत सुनना है।
0: okay.
4: और गाने का बोल है, आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने।
0: okay.
4: ये गीत सबसे पहले मैं आपको
0: थैंक यू
4: और आपकी सुंदरता की मूर्त को डेडिकेट करता हूँ, और जितने भी हॉट स्टार सुनने वाले श्रोता है उन सबको ये गीत सुनवा दीजिए सर, धन्यवाद।
1: अर्जय अमन सर जी, शुभ संध्या, नमस्कार, नमस्ते जी, आज हमारा फरमाइश का फिल्म है इवनिंग इन द पेरिस।
0: अच्छा।
1: गाने का बोला, आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने।
0: ओके।
1: हॉट स्टार जो सबको दीवाना बना दे, सभी बड़े को प्रणाम, सभी छोटे को आशीर्वाद, हम सर्वेश भगत हजरगंदा जिला वैशाली बिहार से बोले, हमारा परिवार सतीश भगत, हेमंत भगत, वर्ष किशोर भगत, आनंद शेखर, सुनील कुमार, मीन कुमारी, सूर्य कुमार, मनोज जायसवाल, अशोक देशमुख भाई जी, आत्माराम पाटिल जी, नंदलाल यादव जी, अनिल मेहता जी, आरजे अमन सर जी, सुंदरता की मूर्त जी, आरजे रत्ना जी, आरजे वंशिका जी, आरजे एमएस परमार जी, और सभी आरजे और सभी भाई और सभी बहन इसमें शामिल, सभी को सुना दीजिए, जयराम जी के अमन
0: सर जी।
5: हेलो प्यारे आरजे अमन खान सर,
0: बोलिए बोलिए बोलिए।
5: हेलो प्यारे अमन खान सर जी, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, सुप्रीम नमस्कार। मैं आत्माराम पाटिल सर, आज ओल्ड इज गोल्ड में मूवी लाई है सर, एंड इवनिंग इन पेरिस, और सिंगर है सर मोहम्मद रफ़ी, और गाने के बोल है, आसमान से आया परिश्ता, आसमान से आया परिश्ता, सिखलाने को तो प्यार है तुमसे। अजय जा, तो यह गीत बिल्कुल सुना दो।

0: वेलकम बैक। और मेरे पास फीडबैक आए हुए हैं बहुत सारे, और यहाँ पे सबसे पहले तो एमडी फजी, तो वाह क्या गाना है जनाब, दिल से शुक्रिया इस गाने के लिए। और गजानंद जी के आदरणीय सुरेश मुझे सरोज भगत जी आत्माराम जी के पसंद, मुझे बहुत पसंद है, थैंक यू सो मच सभी को। और मोहन बनते कि ये बहुत ही प्यारा गाना लगा सभी दोस्तों को, थैंक यू सो मच। और बीके पंची लिखते हैं कि वाह सुपर फरमाइश, मजा आ गया सुन के। और नाहिद जी लिखते हैं कि सभी दोस्तों की ये डिमांड बहुत अच्छे लगे, थैंक यू सो मच। और बिट्टू कुमार लिखते हैं कि ये तीनों भाई की पसंद मुझे बहुत पसंद है, थैंक यू सो मच। और सर्वेज भगत जी
1: आरजे अमन सर जी धन्यवाद, हमारा गाना अशोक भाई अशोक देशमुख का गाना और आत्माराम पाटिल जी तीनों भाई का मिली जुली फरमाइश आप शामिल कर दिए, धन्यवाद सर।
0: ओके जी, और साथ ही साथ आरिफ सिंह जी देखते हैं कि तीनों दोस्तों की मिली जुली ये डिमांड बहुत ही शानदार लगी है, थैंक यू सो मच। और काजल झक्का जी क्या कहती है,
2: थैंक यू सर जी गाना बजा देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, और सभी दोस्तों को भी बहुत बहुत शुक्रिया फीडबैक देने के लिए, और सभी दोस्तों का गाना बहुत अच्छे अच्छे बज रहे हैं, प्रोग्राम बहुत ही अच्छा चल रहा है, मैं भी सुन रही हूँ काजल सीतामढ़ी बिहार से।
0: ओके जी बहुत बहुत धन्यवाद है आपका भी। और यहाँ पे अशोक देश मुझे क्या कहते हैं सुनते हैं।
3: धन्यवाद अमन सर, आपने हमारी फरमाइश का गीत सुनवाया, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं निम्बरा महाराष्ट्र से अशोक देशमुख।
0: ओके जी धन्यवाद देते हैं अशोक देशमुख जी। हुकुम चंद जी लिखते हैं कि अमन सर जी वर्ल्ड इज गुड प्रोग्राम सुनने के बाद तो आनंद ही आ जाता है सच में का। वैसे यहाँ पे मीना जी लिखते हैं बहुत ही खूबसूरत शानदार गाना लगा, मजा आ गया सुन के इस गाने को। और मीना कुमारी जी लिखते हैं कि हाँ बिल्कुल चलने वाला ही है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अमीना खान जी लिखते हैं कि लाजवाब सॉन्ग है जी बिल्कुल। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि ये तीनों दोस्तों की मिली जुली फरमाइश मुझे बहुत पसंद आई है। और कुंता बेनी लिखते हैं कि आदरणीय सर्वेश भगत जी, अशोक देशमुख जी और आत्माराम पाटिल जी के पसंद बहुत ही शानदार लगी है, थैंक यू सो मच। एंड राधा कृष्ण को लिखते हैं कि ये सभी दोस्तों की मिली जुली फरमाइश मुझे बहुत ही पसंद आई, थैंक यू सो मच। ये फीडबैक सुन लेते हैं।
4: अमन सर जी, आदरणीय सर्वेश भगत जी, आदरणीय अशोक देशमुख जी, आदरणीय आत्माराम पाटिल जी, इन तीनों दिग्गज श्रोताओं की मिलजुली फरमाइश सुपर और सुपर सुपर। उनका गीत हमें बहुत अच्छा लगा, उनको मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा इतना अच्छा गीत सुनाने के लिए, मैं फूले भक्त संजू भाऊ धन्यवाद।
0: वेलकम जी आपका भी। बाबूलाल जी लिखते हैं कि तीनों दोस्तों की पसंद मुझे बहुत पसंद आई है, तो अगला जो गाना मैं सुनवाने जा रहा हूँ वो है हमारे किन का, गजर क्या नाम है इनका, नंदलाल यादव जी का, नंदलाल यादव जी इनका गाना मैं प्ले करने वाला हूँ। कहाँ गया इनका नंदलाल जी, देखना पड़ेगा मुझे, सॉरी। आते हैं,
5: आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार ओल्ड इज गोल्ड स्पेशल शो आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार 90s एंड न्यूज स्पेशल में सुनिए 1986 से लेकर आज तक के गाने। आप मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश कर सकते हैं सिर्फ रेडियो हॉटस्टार के ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाती रहो।

बिल्कुल आप तो भाई यानी कि नाश्ते रहिए, फिलहाल हम फीडबैक शामिल करते हैं और मीना जी लिखते हैं बहुत ही खूबसूरत पसंद है, थैंक यू सो मच। ओके जी, और मोहन वाले लिखते हैं कि ये गाना मुझे बहुत पसंद है, थैंक यू सो मच। और काजल झका जी लिखते हैं बहुत ही प्यारी पसंद है। अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि बस क्या बात है, मस्त सॉन्ग अमन सर जी, पूरे 100 नंबर ऐसे गाने के लिए तो भाई दीवाना बना ही देगा, बिल्कुल। और जी बिल्कुल, और यहाँ पे लिखते हैं यानी कि कुंता बेनी जी लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत फरमाइश है। नंदलाल जी बहुत बहुत धन्यवाद इस गाने के लिए। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि नंदलाल जी की पसंद मुझे बहुत पसंद है, थैंक यू सो मच। इसी बात पे अगला जो यानी कि पसंद मैं प्ले करने वाला हूँ, अमीना खान जी का जाने कहा मेरा जिगर गया जी अभी।

0: बिल्कुल यही चुराया हुआ है फिलहाल, मेरे पास फीडबैक आया हुआ है बहुत सारे। और यहाँ पे सरबजीत सेठी लिखते हैं कि अशोक दस मुझे ग्रुप की फरमाइश मुझे बहुत पसंद है, थैंक यू सो मच सभी दोस्तों को। और फुल बक्सन जुबाव जी क्या कहते हैं?
1: हमारे मित्र नंदलाल यादव जी, इनकी फरमाइश का गीत एकदम अनसुना और मैंने पहली बार सुना, उनको मैं दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगा इतना अच्छा गीत सुनवाने के लिए। और अभी जो गीत चल रहा है हमारी अमीरा खान जी, इनका गीत भी सर मैंने पहली बार सुना, थैंक यू सो मच इतना अच्छा गीत सुनवाने के लिए। मैं फुल भक्त संजीव भाऊ, धन्यवाद
0: धन्यवाद देते हैं आपको भी। और साथ ही साथ अनिल कश्यप जी लिखते हैं वाह मजा आ गया गाना सुनकर जी, गाना था ही ऐसा। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि लाजवाब फरमाइश, ओल्ड इज गोल्ड जिंदाबाद है। और साथ ही साथ अमीना खान जी लिखते हैं बंदा बहुत शुक्रिया मेरी पसंद प्ले करने के लिए, जी वो तो मुझे करना ही था। और यहाँ पे मोहन निवाल लिखते हैं कि बहुत ही शानदार पसंद सुनने को मिला, मजा आ गया सुन के। नंदनी मालिक थे कि सुपर से ऊपर गाने सभी दोस्तों के गाने, मजा आ रहा है सुन सुन के। राधा कृष्ण को लिखते हैं कि लाजवाब फरमाइश है, बहुत अच्छा लगा ये गाना। और कुंता जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच अमीना जी, बहुत ही ब्यूटीफुल फरमाइश आपकी लगी है मुझे। और बाबूलाल जी लिखते हैं अमीना जी के पसंद मुझे बहुत पसंद है, थैंक यू सो मच। इसी बात पे अगला जो मैं डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो मीना कुमारी जी का, मीना कुमारी जी इंजॉय द ट्रैक।

ओके, तो इसी बात पर अगला जो गाना मैं प्ले करने वाला हूँ, दो दोस्तों की पसंद है, हमारे राधा कृष्ण गोप जी और MD फैज आलम जी का डिमांड है, और ये पसंद फिल्म आंखें का वो लाजवाब नगमा है। एंजॉय द ट्रैक।

और मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आए हुए हैं, बहुत बहुत सभी को धन्यवाद देते हुए और उनके फीडबैक को शामिल करते हैं। और जैसे कि मेरे पास यहाँ पे मीना जी लिखती है, वाह बहुत खूबसूरत शानदार डिमांड, थैंक यू सो मच फॉर दिस सॉन्ग। एंड नाजिम जी लिखते हैं कि वाह सुपर हिट पसंद के लिए थैंक यू सो मच। और मीना को मैं लिखते हैं कि गैरो पे करम वाला गाना मुझे बहुत पसंद आया, थैंक यू सो मच, और आपने मेरा भी गाना प्ले कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वीके पंजी लिखते हैं कि बहुत ही सुपर फरमाइश है, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए। और मोहन भाई लिखते हैं कि गैरो पे करम वाला गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच आपका भी। आप अमीना खान जी लिखते हैं कि सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और दिल से शुक्रिया इस गाने के लिए, गैरो पे सितम अपनों पे करम है जाने वफा ये जुल्म न कर। और जाकिर खान जी लिखते हैं कि तेरी हर बात को सच मान बैठे हैं, लिखते हैं कि तेरी हर बात को सच मान बैठे हैं, हम अपनी जिंदगी तेरे नाम कर बैठे हैं, अब कोई गौर और दुआ मांगे तो भी तो क्या मांगे, अब खुदा से तुझे ही अपने हक में मांग बैठे हैं, बिल्कुल मांग बैठे हैं भाई। और मेरे पास यहाँ पे राधा कृष्ण को भी लिखते हैं कि मेरे गाने को बजाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको अमन जी। और नाहिद जी लिखते हैं वंडरफुल फरमाइश दोनों दोस्तों को, थैंक यू सो मच। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि दोनों दोस्तों की पसंद मुझे बहुत अच्छी लगी है, धन्यवाद देते हैं इतना प्यारा गाना सुनवाने के लिए। साथ ही साथ नंदनी माँ लिखते हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही प्यारा बहुत ही सुंदर गाना है, धन्यवाद देते हैं। सर्वजीत जी लिखते हैं कि बहुत खूबसूरत गीत का डिमांड है। और कुंता जी लिखते हैं कि वह क्या बात है सुपर लाजवाब गाने का डिमांड, थैंक यू सो मच दोनों दोस्तों को। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि प्रोग्राम तो हमेशा की तरह सुपर ही चल रहा है और सभी गाने एक से बढ़कर एक चल रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है सुन सुन के। साहिब हुसैन जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है साहिब हुसैन जी। अगली पसंद जो है वह संध्या पटेल जी का लंबी जुदाई, बिल्कुल लंबी जुदाई हो गया है।

0: बिल्कुल लंबी जुदाई है और वैसे गाना भी बहुत ही अच्छा लगा है। कजल सकाची लिखते हैं कि अपनों पे कराम गैरों पर सितम, ये गाना बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि संध्या जी के वचन मुझे बहुत पसंद है, थैंक यू सो मच। और बीके पंजी लिखते हैं कि सर जी लंबी जुदाई, वाह क्या फरमाइश है, मजा आ गया सुन के। ये फीडबैक सुन लेते हैं।
1: अर्जय अमन सर जी, संध्या पटेल जी अपने गाने में शामिल किए हैं और सभी भाई और सभी बहन अपने अपने गाने में शामिल होते हैं, सभी को भी धन्यवाद देते हैं जी।
0: ओके जी, और नाजिम जी लिखते हैं औसम सॉन्ग, इसी बात पे नाजिम जी का ही मैं गाना प्ले करने वाला है। लिखते हैं कि ना अमन जी गुड इवनिंग, आज मुझे लाल दुपट्टा मलमल का गाना सुनना है और ये गाना सबसे पहले आपको सभी सुनने वाले दोस्तों को डेडिकेट करना चाहता हूँ, तो सुनवा दिया, इंजॉय कीजिए। क्या करते थे साजना,

0: वेलकम बैक। फीडबैक भी मेरे पास बहुत सारे आ चुके हैं और यहाँ पे ओ माय गॉड बहुत सारे फीडबैक, बहुत सारे यहाँ पे। यानी कि कुंता जी लिखते हैं कि वेरी वेरी वेरी नाइस फरमाइश संजय जी के, मुझे मजा आया सुन के। और राधा कृष्ण को भी तो बहुत खूबसूरत ये गाना, मुझे बहुत पसंद आया। और वीके पंच लिखते हैं कि क्या करते थे साजना, बहुत लाजवाब गाना। और मोहन भाई लिखते हैं कि वाह क्या बात है, क्या पसंद है। और यहाँ पे नाजिम जी लिखते हैं थैंक यू सो मच अमन जी गाना प्ले करने के लिए, दोस्तों का भी धन्यवाद। मीना जी लिखते हैं वाह क्या बात है, मुझे ये गाना बहुत पसंद आया। अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि जिंदगी की खूबसूरती इस बात में नहीं कि आप कितने खुश हैं, बल्कि इसमें है कि आपकी वजह से कितने लोग खुश हैं। जी बिल्कुल सही कहा, वो तो है बिल्कुल। बिट्टू कुमार लिखते हैं कि बहुत ही शानदार पसंद है। और साहिब हुसैन जी लिखते हैं कि अमन सर जी हम लोग बचपन में हम लोग ये गाना रेडियो पर ही सुनते थे, और यानी कि क्या दर्द इस गाने में, क्या करते थे साजना। और बहुत अच्छा लगा गाना सुन के, मजा आ गया सुन के। और अकबर खान लिखते हैं कि सुपर सॉन्ग अमन जी, मजा आ गया ओके। और नाहिद जी लिखते हैं कि तुम्हारी एक झलक के लिए ये दिल दिन रात ये तरसता रहता है, और तुम इन पास ना हो तो सावन भी बेवजह बरसता रहता है। ओ सजना तुम क्या जानो इस दिल का आलम, ये तो बस तुम्हारी धड़कन ही बनकर सीने में धड़कता रहता है। वाह क्या बात है। बाबूलाल जी लिखते हैं कि एमडी नाजिम जी के पसंद मुझे बहुत पसंद आई। और ये फीडबैक
1: अमन सर लाल दुपट्टा मलमल का, इस फिल्म का ये गाना काबिले तारीफ है, और जितनी तारीफ की जाए वो कम ही होगी। बहुत ही शानदार लग रहा है, और मेरे सॉन्ग का अभी टाइम नहीं हुआ है, उससे कोई बात नहीं है, क्योंकि इंतजार का मजा ही कुछ अलग है, और प्रोग्राम में जब लास्ट तक गाना बजता है तो वो और अच्छा लगता है।
0: जी जी जी बिल्कुल। और आपने जो गाना भेजा वो सच में वो सबसे लास्ट में प्ले होने वाला है, क्योंकि गाना आपने भेजा ही ऐसा, अब हम क्या कर सकते, ये तो गलती आपकी है। अगर कुछ ऐसे गाने होते कि मैं उसको बीच में प्ले कर सकता तो वो अलग बात है, लेकिन ये जो गाना आपने भेजा है ना, ओहो वो तो अंत में ही प्ले हो सकता है, उससे पहले नहीं प्ले हो सकता है, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ चलिए अगला गाने की तरफ मैं बढ़ूंगा बिना देर के हुए। और वो गाना जैसे कि यहाँ तीन दोस्त लेके आए हुए, नाम है मोहन नेवारे एंड राजमल हिवराले एंड मंगेश देशमुख जी, सुनवा दिया, इंजॉय कीजिए जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार करने खरीदो करो।

0: बिल्कुल जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, और फीडबैक भी आ चुका है, शामिल करता हूँ मैं।
1: क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के, क्या करते थे साजना।

0: थे। एकदम दिल को छू गया हमारे मित्र एमडी नाजिम जी आपका गीत। मैं भोले भक्त संजू भाऊ अमन
1: जी
0: एकदम ललंटा गीत रहा। थैंक यू
1: सो मच, वेलकम जी आपका भी। और सर जी जिंदगी की न टूटे लड़ी लाजवाब ये डिमांड रही है। और मोहन वाली जी अमन जी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सभी दोस्तों का गाना प्ले करने के लिए। और कुंता जी लिखते हैं कि ये सभी दोस्तों की मिली जुली फरमाइश मुझे बहुत पसंद रही। थैंक यू सो मच। और नाजिम जी लिखते हैं सुपर हिट पसंद। थैंक यू सो मच। एंड यहाँ पे प्रमोद कुमार लिखते हैं कि मुस्कुरा कर जो गुजर जाए वही है जिंदगी, हर पल जो हर पल में जो प्यार भर जाए वही है जिंदगी। लंबी उम्र का तो किसी को पता है दोस्त, एक पल में जो यानी कि प्यार ही हो जाए वो है जिंदगी। और यहाँ पे हमें नंदनी वाले लिखते हैं कि बहुत ही मनभावन गीत है बिल्कुल। और आरिफ सिंधी जी लिखते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया अमन जी, अभी तक एक समय के गाने सुनने को मिल रहे हैं जी। ओके जी, और अब अगली फरमाइश में सुनवाने जा रहा हूँ जिसे लेकर आई है यहाँ पे। नाम है उनका सुनीता गोप जी। तो सुनीता गोप जी, एंजॉय द ट्रैक।

बिल्कुल जमाना चाहे छोटे लेकिन रेडियो हॉट स्टार ना छोटे। वैसे फीडबैक भी मेरे पास आए हैं। मंगे जसमती लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी गाना प्ले करने के लिए। राधा कृष्ण को लिखते हैं कि बहुत ही शानदार पसंद है, थैंक यू सो मच। और यहाँ बाबूलाल जी लिखते हैं कि तीनों दोस्तों की मेरी फरमाइश मुझे बहुत अच्छी लगी है। हीरामन जी लिखते हैं कि ओके मैं कोशिश करता हूँ। और यहाँ पे अजय कुछ लिखते हैं कि सुपर हिट पसंद है। और यहाँ पे प्रमोद कुमार लिखते हैं कि सुनीता गुप्ता के पसंद मुझे बहुत पसंद आई है। साथ ही साथ बीके पंच लिखते हैं कि बहुत ही शानदार पसंद है। और अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि जी जी जी बिल्कुल हम तो ऐसे ही चलाते हैं भाई, आप नहीं सुनते हैं ना। मीना जी लिखते हैं वाह क्या बात है, बहुत ही प्यारी पसंद है। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार पसंद सुनने को मिला, बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता गोपी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी। इसी बात पर कुंता बेनी जी का गाना मैंने प्ले कर दिया है, बहुत ही बेहतरीन इनका डिमांड है, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। बिल्कुल

0: ओके जी, और मेरे पास फीडबैक आए हुए हैं और ओके जी, और यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे पहुँचे हुए फीडबैक सुनते हैं।
1: अमन सर जी, हमारे मित्र मोहन नेवारे जी, मंगेश देशमुख जी और राजमल हिवराड़े जी, इन तीनों दोस्तों की आपने जो मिलजुल फरमाइश चलाई सर, एकदम दिल को छू गई और इनका गीत हमें अच्छा लगा। और अभी जो फरमाइश चल रही है हमारी सुनीता गोप जी इनकी, इनका गीत भी सर मैं पहली बार सुन रहा हूँ, मज़ा आ रहा है सर। आज का कार्यक्रम एकदम सुपर और सुपर से ऊपर हो रहा है, हम इंजॉय कर रहे सर। थैंक यू सो मच इतना अच्छा प्रस्तुतिकरण करने के लिए, धन्यवाद
0: धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद देते हैं आपको भी। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं क्या कहते हैं आत्माराम पाटिल जी, कुछ नहीं, उनका कुछ ऑडियो आया ही नहीं मेरे पास, लेकिन ऑडियो था, ये फीडबैक सुन लेते हैं।
2: आरजे अमन सर जी, कुंता बेनी जी अपने गाने में शामिल किए हैं, उनको धन्यवाद देते हैं जी।
0: ओके जी, धन्यवाद देते हैं आपको भी। अमीना खान जी, वाह क्या बात है, बेहतरीन सॉन्ग सुनने को मिला जी, बिल्कुल। और कुंता जी लेते हैं, थैंक यू सो मच अमन जी, आपने मेरा गाना प्ले कर दिया, थैंक यू सो मच। उसके बाद मोहन वाली लिखते हैं सुपर पसंद के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और राधा कृष्ण को लिखते हैं सुपर फरमाइश, मजा आ गया सुन के। और नाजिम जी लिखते हैं ये गाना मुझे बहुत पसंद है, ऑसम चॉइस। एंड यहाँ प्रमोद जी लिखते हैं कि उम्र भर का साथ निभाने का जो वादा है, जिंदगी की धूप वो उस साथ की वो साया ही रह गया आधा है, और फिर भी ये फितरत हमारी है वो वादा निभाने का, जो दिया वो जुबान वो फिर यानी कि पीछे नहीं हटने का वादा है जी, बिल्कुल। वैसे अगला जो मैं डिमांड प्ले करने वाला हूँ, आज सभी गाने, ओह माय गॉड में क्या ही बताऊँ, सभी गाने एक से बढ़कर एक है। और अगला जो गाना मैं प्ले करने वाला हूँ वो शाहिद अंसारी जी का जिंदगी, इंजॉय कीजिए शाहिद अंसारी जी।

0: वेलकम बैक। मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आए हुए हैं। सरबजीत जी लेते हैं कि बहुत ही शानदार लाजवाब गाना, मजा आ गया सुन के। प्रमोद कुमार लेते हैं कि साईं जी का पसंद मुझे बहुत ही लाजवाब लगी है, धन्यवाद देते हैं। और ये फीडबैक
1: और जय अमन सर जी, साहिद अंसारी जी अपने गाने में शामिल किए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जी।
0: ओके जी, धन्यवाद देते हैं। और मोहन भाई लिखते हैं कि जो वादा किया निभाना पड़ेगा वाला गाना मुझे बहुत पसंद है। कुंता जी लिखते हैं वेरी वेरी वेरी नाइस फरमाइश है। और ये फीडबैक
2: अमन सर जी, हमारे प्रिय मित्र शाहिद अंसारी जी, इनकी फरमाइश का गीत अभी जो आपने चलाया सर, मैंने पहली बार सुना और इस गीत के बोल सीधे दिल को छू गए। उनको मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा इतना अच्छा गीत सुनवाने के लिए। और इनके पहले आपने कुंता बेनी जी, इनकी फरमाइश चलाई सर, तो उनका गीत भी सर एकदम उनको मतलब दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगा, इतना अच्छा उन्होंने गीत सुनवाया। और आज का कार्यक्रम भी सर बढ़िया हो रहा है, मज़ा आ रहा है सर, सभी दोस्तों की फीडबैक आ रहे हैं सर, सुन के मज़ा आता है। मैं धन्यवाद बोलूँगा कुंता बेनी जी इनको और शाहिद अंसारी जी इनको, थैंक यू सो मच।
0: वेलकम जी। और मैं बता दूँ शाहिद अजा क्या कहते हैं।
3: अमन सर, शाहिद अंसारी ने अपने गाने को शामिल किए हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं।
0: ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको भी। और नाजिम जी लिखते हैं औसम सॉन्ग है, मीना कुमारी जी लिखती हैं सर जी आपकी वॉयस सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए। और यहाँ पे MD यानी कि परवेज आलम लिखते हैं कि अमन जी प्रोग्राम बहुत ही बेहतर हो रहा है, थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू सो मच। इसी बात पे अगला जो मैं गाना डिमांड करने मतलब जो मेरे पास गाने की डिमांड आई है वो RJ सोनी जी की है। RJ सोनी जी, इंजॉय द ट्रैक।

0: और लगता है इस गाने का जवाब मुझे देना पड़ेगा हीरामन जी के गाने के साथ। ये फीडबैक पहले सुन लेते हैं।
1: जी अमन जी, ये गाना शाहिद अंसारी जी का बहुत ही दिलकश लगा, दिल खुश हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया उनको, एमडी फैज आलम
0: जी। धन्यवाद देते हैं एमडी फैज जी। मोहन वाली लिखते हैं कि बहुत ही शानदार गाना सुनने को मिला, मजा आ गया है। और ये फीडबैक सुन लेते हैं, क्या कहते हैं
2: अमन सर जी। आर्य सोनी जी का जो फरमाइश है बहुत बहुत बहुत बहुत ही मस्त है। और इस टाइम इस रात में मतलब क्या ही कहना इस गाने का।
0: जी बिल्कुल, जितनी तारीफ करें उतनी कम है। जब आप भी सुनते जाइएगा, अभी ये फीडबैक सुन लेते हैं।
3: अमन सर जी, आरजे सोनी जी, इनके फरमाइश का गीत आज के कार्यक्रम में एकदम हमें अच्छा लगा। उनको मैं दिल से शुक्रिया और धन्यवाद बोलूँगा इतना अच्छा गीत सुनवाने के लिए। अमन सर जी, आपको भी शुक्रिया, आपने उनका गीत चलाया। मैं फूले भक्त संजू बाबू, रेडियो ऑटो स्टार, जो दीवाना बना दे अमन जी के साथ।
0: धन्यवाद। ओके जी, आप और यहाँ पे प्रमोद कुमार लिखते हैं कि लाजवाब पसंद है, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए। असलम राणा जी लिखते हैं कि मैं भी जुड़ गया हूँ। अच्छा, अब जुड़े हैं, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। मीना जी लिखते हैं कि नहीं मैं सिंगर होंगे नहीं हूँ जी बस। और यहाँ पे कुंता भी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच आरजे सोनी जी, बहुत ही प्यारा गन आपने ये नगमा सुनवाया, दिल खुश कर दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको। इसी बात पर हीरामन खियाने जी का गाना सुन लेते हैं। क्या सुनवा रहे हैं, जरा सुनते हैं।
4: नमस्कार।
0: नमस्कार
4: आरजे अमन सर जी।
0: नमस्कार,
4: गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग,
4: मैं हीरामन खिराड़े वाशिम महाराष्ट्र से।
0: वेलकम जी।
4: आज ओल्ड इज गोल्ड में मुझे भी एक गीत सुनना है, और गीत के बोल है, अरे होगा तुमसे प्यारा कौन हमको तो तुमसे हे कंचन, अरे हे कंचन प्यार। ये गीत सुनना है सर।
0: ओके जी।
4: और इस गीत में डेडिकेशन में मुझे पहले तो आरजे अमन सर जी आप शामिल हैं, और आपकी सुंदरता की मूरत भी इसी गीत में शामिल है, और आरजे वंशिका भी इसी गीत में शामिल है। कुछ मेरे प्यारे मित्र है, जैसे कि अनंत कुलकर्णी जी, अमोल कांबड़े जी, मिसाल अंगद जी, गजानन सालोकार जी, संतोष यस काड़े जी, फुले भक्त संजय भाऊ जी, रवि मुहाड़े जी, मोहम्मद अत्तार जी, रोहित कुमार जी, इलियास कुरेशी जी, सर्वेश भगत जी, और रेडियो हॉटस्टार सुनने वाले सभी लाइव दीवाने और दीवानियों को ये गीत डेडिकेट कर रहा हूँ। ओके, धन्यवाद।
0: ओके जी, बिल्कुल। होगा तुमसे प्यारा कौन, ये गाना मैं प्ले करूंगा फिलहाल एड के।
5: आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, और सुन रहे हैं स्टार ओल्ड इज गोल्ड स्पेशल शो आरजी अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार 90s एंड न्यूज स्पेशल में सुनिए 1986 से लेकर आज तक के गाने। आप मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश कर सकते हैं सिर्फ रेडियो हॉटस्टार के ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से, और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाती रहो दिल से।

0: बिल्कुल होगा तुमसे प्यारा कौन कोई नहीं है। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि लाजवाब फरमाइश भी है बिल्कुल। और यहाँ पे फूलाबाग संजू भाई क्या कहते हैं ये भी सुन लेते हैं।
1: हीरामन भाऊ आज ची तुमची फरमाइश एकदम अप्रतिम आणि एकदम वेगळीच होती। खूप चांगलं आजचं आपलं गीत होतं। इतकं चांगलं गीत तुम्ही आम्हाला ऐकवलं आणि आम्हाला तुमच्या गीतात सामील देखील केलं। खरंच खूप छान आजची आपली फरमाइश मला खूप आवडली। आणि अमन सरजी आपल्याला देखील अगदी मनापासून धन्यवाद। तुम्ही आमच्या हीरामन भाऊची फरमाइश चालवली। रेडिओ हॉटस्टार जो सर्वांना दिवाना बनवतो अमन जी सोबत। संजू भाऊ धन्यवाद।
0: ओके जी धन्यवाद आपका भी। मीना कुमार लिखते हैं कि आरजे सोनी जी का गाना मुझे बहुत प्यारा लगा है। और यहाँ पे मैं बता देता हूँ मोहन वाले लिखते हैं कि वास्तु पेट पसंद चल रहा है। धन्यवाद देते हैं उनको। और प्रकाश जी क्या कहते हैं

0: कंचन प्यार। अमन सर
1: जी,
0: मजा आ गया सॉन्ग सुन के। मैं जुड़ा काफी देर से हूँ पर मैसेज नहीं कर पाया।
1: कोई बात नहीं, आप सुन रहे हैं ना। और ये अकबर खान जी क्या कहते हैं?
2: अरे होगा तुमसे प्यारा कौन हमको तो तुमसे है हे कंचन, अरे हे कंचन हो प्यार। लाजो आपके इरावन खिराड़ा जी पसंद का पालिश अकबर का।
1: और इसी बात पर अगला जो डिमांड है जाकिर खान जी के पसंद है, तो जाकिर खान जी एंजॉय द ट्रैक।

0: वेलकम बैक। मेरे पास फीडबैक बहुत सारे हैं, बहुत सारे। यहाँ पे पूछा चली थी, वाह क्या लाजवाब डिमांड है, मजा आ गया इस डिमांड को सुन के। ये फीडबैक सुन लेते हैं।
1: अस्सलामुअलैकुम अमन राजन, मैं MD असलम राणा हापुड़ उत्तर प्रदेश वाला जी। मैंने जो अभी मैसेज भेजा था जी, वो इसलिए नहीं भेजा कि मैं अभी जुड़ा हूँ,
0: अच्छा।
1: बल्कि मैंने उसमें लिखा था कि हम भी जुड़े हुए हैं जी प्रोग्राम,
0: अच्छा,
1: से
0: अच्छा,
1: कब से, जब से आपका ओपनिंग गीत चला था रेशमी पाजेब की झनकार के सिक्के, लैला मजनू गीत से, और नरेश बिलोकर जी का फर्स्ट फरमाइश, पहली फरमाइश चली, और उसके बाद जी गजानन सलोकर जी और हमारे संजू भाव जी, इन सभी के ग्रुप की फरमाइश चलाई,
0: अच्छा।
1: और जब से लेकर के अब तक मैं जुड़ा हुआ हूँ, जो लगातार गीत सुना हूँ, गीत एक से एक बढ़िया शानदार आ रहे हैं। शुरू शुरू में तो चटकीले शानदार गीत चले, अब थोड़े सीरियस हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं प्रोग्राम से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं शायद दुर्भाग्यवश मैं अपनी फरमाइश नहीं सुन पाया,
0: अच्छा, अच्छा।
1: ये पता नहीं चल पाया कि प्ले हुई है या नहीं।
0: हो गई है, बहुत पहले।
1: बहरहाल सुन करके एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम को। आर जयमन जी आपके साथ, जो दीवाना बना दे ओल्ड इज गोल्ड रेडियो हॉट स्टार पर।
0: धन्यवाद देते हैं आपको, और आपकी फरमाइश प्ले हो चुकी है। आप इतना समझ लीजिए मोहन वाली लिखते हैं कि ये वाला गाना मुझे बहुत पसंद आया, थैंक यू सो मच। और अमीना खान जी लिखते हैं कि है लिखती है कि आवाज में नशा, बातों में मस्ती, हॉट स्टार की ये लिखते हैं कि हॉट स्टार ऑन किया तू, दिल की है बस्ती, अमन जी का शो और मूड की पार्टी, और सुनते रहिए हॉट स्टार जो दीवाना बना दे। ओए होए होए क्या बात है, इस गाने की तो जितनी तारीफ करे कम है जी, बिल्कुल। बाबूलाल जी लिखते हैं कि दोस्त जाकिर खान जी के पसंद मुझे बहुत पसंद आई है। नाही जी लिखते हैं कि ये काफी खूबसूरत फरमाइश है जी, बिल्कुल। और अजय कुछ लिखते हैं कि ये गाना तो मैंने पहली बार आपसे चलवाया था। जी जी आपने चलवाया था, मानता हूँ। आप हमेशा अलग अलग गाने लेके आते हैं, और आज भी अलग ही ये गाना लेके आए हैं जो मैं मतलब पहली बार सुनने वाला हूँ। आपका भी गाना आने वाला है, थोड़ा सा देर हो गई है। ओ माई गॉड, 9:42 हो चुके हैं, मैं तो टाइम पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मुझे जाना है जल्दी। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि जाकिर जी के पसंद मुझे बहुत पसंद आई है। नंदनी माँ लिखते हैं कि बेहद खूबसूरत गाना है, बिल्कुल। और मीना को मैं लिखते हैं कि आप नहीं जी, ऐसी बात नहीं है अभी नहीं। और यहाँ पे नाजिम जी लिखते हैं कि सुपर हिट पसंद है। इसी बात पर अगला जो मैं गाना प्ले करने वाला हूँ, आज के जो विनर है हमारे यानी कि प्रमोद कुमार जी, पहले मैं उनके गाने को प्ले करता हूँ क्योंकि ये लोग ना छूट जाए।

और तब तक आप इस गाने को एंजॉय करें। तो मैं निकालता हूँ आज का यानी यहाँ पे यानी के टॉप लिस्टर का लकी ड्रॉ। देखता हूँ जिनका भी नाम आएगा मैं उन्हें कॉल लगाऊंगा।

और आज के विनर मुझे मिल चुके हैं, वो है अनिल कश्यप जी। बहुत बहुत बधाई हो आज के विनर बनने के लिए। मैं आपको कॉल लगाऊंगा लेकिन सबसे लास्ट में, आपके गाने के बाद लगाऊंगा आपके कॉल।

बिल्कुल इनका भाई यानी कि कार लेके आया होगा राधा किशन गोप, लिखते हैं कि इस मजेदार डिमांड के लिए धन्यवाद देते हैं। अजय कुजी मोहन वाले लिखते हैं कि बहुत ही शानदार ये पसंद है। अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि बलमा हमार बहुत मस्त गाना है जी सर। और उनके बाद यहाँ पे यानी प्रमोद कुमार लिखते हैं कि अजय कुजी की पसंद मुझे लाजवाब लगी है। इसी बात पर MS यानी के परमार जी का गाना मैं मतलब यहाँ पे यानी के प्ले कर रहा हूँ। एंजॉय द ट्रैक MS परमार जी।

0: और जिसका डर था वही हुआ, यानी बारिश आ गई जोरों की। अब जब तक बारिश नहीं खुलती है तब तक मैं आप सबके साथ हूँ। वैसे मैं 10 बजे जाने वाला था लेकिन मुझे अब थोड़ा सा रुकना पड़ेगा यार। और ये फीडबैक शामिल कर लेता हूँ जल्दी से क्योंकि समय कम है।
1: अमन सर नमस्कार, मेरा बिल्कुल बेटा नोएडा से गाना हमको बहुत बढ़िया लगा। सुबह में हमारे मोटर कार लेके आए, ले कितना है
0: हमारे राजेश कुमार जी, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही समझ में, प्लीज थोड़ा अच्छा से बोल के भेजिए ताकि अच्छी आवाज समझ में आए। एक फिर
2: थैंक यू सो मच सर सॉन्ग डिमांड पूरा करने के लिए, और दोस्तों का भी शुक्रिया तहे दिल से फीडबैक देने के लिए। मैं जाकिर खान, जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश।
0: ओके जी, धन्यवाद आपका जाकिर खान जी। अजय कुछ लिखते हैं कि नहीं जी, हमारे कंप्यूटर में गाना है लेकिन मैं क्या ही बताऊं आपको, मेरे पास समय की मतलब की कमी है। अजय कोजी आप ऐसा मत समझिए कि मैं, मेरे कंप्यूटर में बहुत सारे गाने हैं, आप ये मत समझिए बहुत। ओके, फिलहाल अगला जो मैं गाना मैं प्ले करने वाला हूं ये अशोक की पाल जी का। अशोक पाल जी, इंजॉय द ट्रैक।

0: बिल्कुल, और मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आए हुए नाइट जी, वाओ सुपर पसंद, अमेजिंग पसंद, थैंक यू सो मच। एंड अमीना जी लिखते हैं कि आज का प्रोग्राम तो नंबर वन है ही, नंबर वन है, और सब इतने बेहतरीन बेहतरीन यहाँ पे डिमांड लाए हैं कि क्या ही कहें, दिल खुश कर दिया, वाह वाह वाह वाह ये कह रहा है। और सर्वजीत जी लिखते हैं कि यहाँ पे परमार जी गाना मुझे बहुत पसंद आया है। नंदरी मां लिखते हैं कि बहुत ही मीठा गाना है जी, बिल्कुल। और अजय भगत जी लिखते हैं कि मैं कोशिश करूंगा लेकिन मैं प्रॉमिस नहीं करूंगा, ये फिर मैं
1: जी सर, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये गाना तो 5 मिनट का है और आपने चलाया नहीं 1 मिनट भी, मैं ये पूछ रहा था।
0: अच्छा,
1: आपके कंप्यूटर में इतना ही गाना है?
0: नहीं, मेरे कंप्यूटर में पूरा गाना है लेकिन मेरे पास समय कम है, ये इसलिए आई एम सॉरी। अगला गाना जो मैं लेने वाला हूँ जल्द से नाहिद अंसारी जी का, नाहिद जी इंजॉय कीजिए। और सभी दोस्तों को डेडिकेट करना चाहती है, थैंक यू।

यहाँ पे नाही जी लिखते हैं थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए, और अजय जी लिखते हैं कि नाही जी की पसंद मुझे बहुत लाजवाब लगी है, बाबूलाल जी लिखते हैं कि नाही जी की पसंद बहुत ही शानदार लगी है, थैंक यू सो मच नाही जी, और प्रमोद और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि औसम औसम सॉन्ग की पसंद है, मीना कुमारी जी लिखते हैं कि वाह ओ साथी आया बहुत ही प्यारा गाना है, और बिल्कुल, और जाकिर जी लिखते हैं कि अच्छा ओके वाह ठीक है थैंक यू सो मच इस गाने के लिए, ये गाना तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन अगला जो मैं गाना प्ले करने वाला हूँ वो पसंद है मीना इब्राहिम जी की, और मीना इब्राहिम जी एंजॉय द ट्रैक।

और इसी बात पर अगला जो मैं डिमांड प्ले करने वाला हूँ, जो आज के यानी विनर हुए हैं सॉन्ग विनर हमारे जाकिर जी, उनकी पसंद का, और कुत्ता जी लिखते हैं वाओ क्या फरमाइश है, थैंक यू सो मच इस गाने के लिए भी, और नाहिद जी लिखते हैं थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए, और नवीन और मीना जी लिखते हैं थैंक यू सो मच आपने मेरा भी गाना प्ले कर दिया, थैंक यू सो मच, और मीना जी लिखते हैं कि है क्या सॉन्ग है, ये वक्त की आवाज़ का मजा के सुन के, नाजिन जी लिखते हैं ऑसम एंड वंडरफुल फरमाइश, थैंक यू सो मच फॉर दिस सॉन्ग, और इसी बात पर अगला जो गाना मैं प्ले करने वाला हूँ, जाकिर जी इंजॉय कीजिए, और ये गाना मुझे बेहद पसंद है।

भीगे बाल, वो भीगा बदन, वो भीगी भीगी हर धड़कन, वो गाल हया में डूबे हुए, वो होंठ वफा से लरसे हुए, वो आंखें सोई सोई सी, वो सांसें खोई खोई सी। कुछ बोलो, क्यों खामोश हो तुम? इस दिल से क्या नाराज हो तुम?

मेरा, अब भी तुम्हारी फुरकत में एक सावन कोई लिखता है, क्या अब भी तुम्हारे होठों पर एक चुंबन कोई धरता है, क्या अब भी तुम्हारे शानों से मलमल का दुपट्टा गिरता है, क्या अब भी तुम्हारी बाहों में एक दिल सा कोई रहता है।

मैं तुमको सोच रहा हूँ, बस मैं तुमको सोच रहा हूँ, बस तुम मुझ में डूबती जाती हो, मैं तुम में डूबता जाता हूँ। तुम मेरे शाने से लगकर कुछ कान में कहने वाली हो, तुम मेरे ध्यान की दुनिया की एक सुंदर सी शहजादी हो।

0: ओके जी, और यहाँ पे अनिल कश्यप जी लिखते हैं मस्त मस्त मस्त सॉन्ग है जी, बिल्कुल मस्त था। अनाही जी लिखते हैं वाओ वंडरफुल चॉइस जाकिर जी, सच में मजा आ गया सुन के। अमीना खान जी लिखते हैं वाह क्या बात है क्या बात है, दिल की गहराई से शुक्रिया इस गाने के लिए जी, बिल्कुल ये गाना मुझे बेहद पसंद है। और यहाँ पे जुड़ चुकी है नाम है शिल्पा बेन, तो बहुत बहुत वेलकम है। यहाँ पे शिल्पा बेन जी लिखते हैं कि हाय अमन जी, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत ही पसंद है और आज तो वर्ल्ड इज गोल्ड, बहुत अच्छा लगा और आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, थैंक यू सो मच इस आपके लिए। और यहाँ पे जुड़ चुके हैं यहाँ पे किशन पाल जी, बहुत बहुत वेलकम है। इसी बात पर अगला जो मैं गाना यानी कि प्ले करने वाला हूँ वो अनिल कश्यप जी का है, तो पहले इनका गाना प्ले करता हूँ फिर मैं इन्हें कॉल लगाऊंगा।
1: अभी न जाओ छोड़ कर।

0: कौन लगाते हैं? अनिल कश्यप जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो आज के वहाँ पे टॉप लीडर बोर्ड में अपना स्थान जमाने के लिए, और लकी ड्रॉ में आपका नाम आया है, बहुत बहुत बधाई हो आपको।
1: नमस्ते।
0: नमस्ते जी, और क्या कहना चाहते हैं? मैं तो बहुत अच्छा हूँ, आप बहुत झक्कास हूँ, एकदम फर्स्ट क्लास हूँ, एकदम बोले तो यानी मजे में लय भारी।
1: जी जी, और बहुत अच्छा कार्यक्रम चला आज, और लास्ट में हमको कर दिए, बट कोई उसका दुख नहीं है।
0: वो गाना ही ऐसा था कि अभी ना जाओ छोड़ के, कभी अभी भरा नहीं था, मैं क्या कर सकता हूँ।
1: तो सही में तो नहीं भरा
0: वो कभी भरेगा भी नहीं, क्योंकि अभी बहुत सारे दोस्तों की फरमाइश छूटने वाली है। सभी दोस्तों से मैं मतलब ये सॉरी कहना चाहूंगा, क्योंकि सभी की फरमाइश को नहीं प्ले कर सकता, सॉरी, है ना।
1: जी जी, टाइम का बंधन है।
0: बिल्कुल टाइम का बंधन है, और अभी बारिश भी हो रही है
1: जी।
0: लेकिन थोड़ा सा
1: बारिश इधर भी आ गई
0: है, इसीलिए मुझे थोड़ा सा रुकना पड़ा ज्यादा देर के लिए
1: जी।
0: तो बताइए, और कुछ आप कहना चाहेंगे? अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, यहाँ पे आपके गाना प्ले हो रहा है।
1: जितने लोग जुड़े थे और बाकी जो भी फीडबैक आएंगे, उन सबको हमारी ओर से मतलब क्या ही कहें, मतलब बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी को। और बाकी अभी जो मैं गाना सुनूंगा वो कभी का गाना हो सकता है या फिर उसी?
0: आप कोई भी गाना सुन सकते हैं, चूंकि आप विनर है ना, कोई भी गाना सुन सकते हैं, नो प्रॉब्लम
1: जी। तो ताकत का बजा दीजिएगा, पत्थर पे लिखी कोई।
0: पत्थर पे लिखी कोई, पत्थर पे लिखी
1: जी,
0: एक कहानी है ना, बन जाए
1: जी। और मैं विनर बन जाऊंगा, मुझे इसका आइडिया नहीं था, थोड़ा सा सोचने पर मजबूर हूँ, क्या बोलूँ नहीं बोलूँ, बस खुश।
0: कोई बात नहीं, एंजॉय कीजिए गाने को। ओके बाय,
1: थैंक यू सर।

और यहाँ बहुत जोरों की बारिश हो रही है और लगता है कि आज भी मुझे भींग कर ही जाना पड़ेगा क्योंकि कल तो भींग कर गया था बहुत जबरदस्त बारिश में।

बिल्कुल। और यहाँ पे जागीर खान लिखते हैं थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए, दोस्तों को भी धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। यहाँ पे शिल्पा बेंच लिखते हैं ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा और ये तो आपके जी प्रोग्राम के लिए, जी बिल्कुल सही कहा आपने। और रवि मुखर्जी लिखते हैं अभी ना जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं, अमन सर जी हाँ जी मुझे पता है जी मैं क्या करूँ अभी रुका हूँ थोड़ी देर के लिए जब तक बारिश हो रही है तब तक। राहित जी लिखते हैं थैंक यू सो मच फॉर दिस सॉन्ग बहुत अच्छा लगा ये गाना। और कुंता भी लिखते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल फरमाइश है। अनिल कश्यप जी आपकी बहुत अच्छा लगा है। अमीना खान जी लिखते हैं कि ये बिल्कुल मुझे नहीं पसंद है, मैं नहीं पढ़ पाता हूँ, मुझे अजीब सा लगता है। ओके और यहाँ पे राधा कृष्ण को देखते हैं कि बहुत खूबसूरत फरमाइश है जी बिल्कुल। वैसे आगे मैं अगला गाना जो मैं प्ले करने वाला हूँ वो पसंद है हमारे ये सुनील कुमार जी का। सुनील कुमार जी एंजॉय द ट्रैक।

और इसी बात पर अगला जो गाना मैं प्ले करने वाला हूँ वो नगमा है हमारे अभिषेक तिवारी जी का। अभिषेक तिवारी जी, इंजॉय कीजिए।

0: और लगता है कि बारिश हुई है कम, तो मुझे जल्दी भागना पड़ेगा। और ये गाना जल्दी से मैं प्ले कर रहा हूँ, और ये गाना की फरमाइश मेरे पास डिमांड आई थी।
1: यही पूछा था एक दिन
0: ये बाबूलाल अंजाना जी का। बाबूलाल अंजाना जी थोड़ा सा सुनवाता हूँ।

अगला गाना जल्दी से मैं प्ले करने वाला हूँ, जिनका नाम है हमारे मुबारक हुसैन जी। ये कभी फरमाइश नहीं करते हैं, लेकिन आज उन्होंने किया है, तो उनका गाना मेरा प्ले करना।

0: और इसी बात पर आखिरी गाना मैं प्ले करके जा रहा हूँ मोहम्मद इन जलील जी का, और इसी गाने के साथ मुझे दीजिए प्रोग्राम से निकलने की इजाजत।
1: कैसे जीते हैं भला।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 12 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

अपने बाप का क्या जाता है। जोशी पड़ोसी कुछ भी बोले बोले, हम तो कुछ नहीं बोलेगा।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 1 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: बता दूं? वो यहीं पर
1: है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 2 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: हाँ तो नैनों में
1: बिंदिया है,
0: माथे पे
1: बिंदिया है,
0: तो बालों में
1: गजरा है,
0: आँखों में
1: गजरा है।
0: ओहो।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 4 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.